है, खुदा जाने किसको नजर ढूंढती है, इधर ढूंढती है उधर ढूंढती है, खुदा जाने किसको नजर ढूंढती है, न दर ढूंढती है न घर।

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा न होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: AGS ट्यूबलेट, दिखाए काम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
3: एंड हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: एंड

0: and
1: Hire T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Hire.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमे इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
3: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
6: हमने आप ना कुछ 3 बार मौत देखे
7: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
8: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
5: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
9: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा।
5: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क्याम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: FM 100 facebook.com/FM247365
11: FM247365। किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
12: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
11: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉक नहीं करता।
13: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
12: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
11: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
0: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
12: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
0: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
11: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
12: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
11: आइए वेट से आगे का सोचें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
3: MCB 1 करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, free banker's check, free SMS alerts, free intercity transactions, free debit card aur bahut kuch. To aaj hi MCB 1 current account khulwaye aur behtareen services ka fayda uthaye. MCB Bank for life.
0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
4: And hire kar naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No Frost, no worries.
0: And
5: Tufaan hai har jeet ki pehchan hai.
0: And
6: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
7: aaj hi हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.
0: एंड
8: हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
9: FM247365.
10: Let's celebrate
11: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: MCB 1 करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB 1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
2: This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and
4: Higher Kan Naya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling, or Energy Saving, No Frost, No Worries,
2: and
5: Tufan Hai, Har Jeet Ki Pehchan Hai,
2: and
6: Phoenix Laga Aur Bhool Ja, Phoenix Laga Aur Bhool Ja,
2: and
7: Aaj Hi.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।
2: किसने कहा था पैसे

0: This program is brought to you by Aji, Higher Mini LED TV Line aur Stadium ka mahol ghar mein banaye.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान-ए-जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: 247-365. FM 247-365. FM 100. 71 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिंसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: 100 FM।
4: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाव, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: पाकिस्तान में बर्चे फेंकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने बर्चे अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या ये 6 हिंसों का कोड भेज दे। बाज़ औक़ात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो ہو یا پن لگا دیا گیا ہو. اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں, سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے, بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں, میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فال کریں. سیٹنگز, اکاؤنٹ, ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن, یہاں ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات, سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز, لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
7: Back to back. Only music, no RJ talk.
8: Only music, no RJ talk.
7: This is FM 100.
9: Come on.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: This program is brought to you by
2: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost, No Worries
3: And आज ही Higher Mini LED TV लाएं और Stadium का माहौल घर में बनाएं
0: And
4: Higher T3 AC Expert Extreme T3 Inverter for Extreme Heat Higher
0: FM Like us on facebook.com/FM247365 FM247365 This is your music. Happy Hour with Nadeem Akhtar.

0: ये सुने हो आप सबको चंद मेरे मखना ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मैसेजेस करेंगे आपके एड्रेस पे, आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड करेंगे 36361। ऑलमोस्ट तकरीबन एक हफ्ते के बाद यहाँ पर आया हूँ। हाय मैं बड़ा उदास था भाई, बड़ा उदास था, आप सबको बहुत मिस किया, लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। एहतराम मुहर्रमुल हराम के वजह से के और उसमें FM 100 पर आप खसूसी प्रोग्राम सुन रहे थे। खैर जी संडे है तो आज का सवाल पहले फेंकते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल, और वो ऐसा सवाल है कि जो कि मैं अक्सर आप लोगों से करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ आपसे स्पेशली संडे के शो में, नाश्ते के हवाले से। क्या करते हैं नाश्ता? तो आज ये नहीं पूछना कि आप नाश्ता क्या कर रहे हैं, आज हमसे ये पूछते हैं, हम आपसे ये पूछते हैं कि आपका पसंदीदा नाश्ता क्या है। नाश्ते में बेतहाशा वैरायटी है। अभी समय आएगा, अगर आया तो ऑफिस ना गया हो भाई, तो वो भी बताएगा नाश्ते के हवाले से, बताता कि आज उसने क्या खाया। तो आपका पसंदीदा नाश्ता कौन सा है ये आपने मुझे दसना है 3636 बार। और फीता काटा है जनाब हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब ने, और सलाम के बाद सजाद अली या नूरजहान के गाने की फरमाइश कर दी है, और इमरान रियाज, नसीम कुरैशी, असमी शेख, अयूब आफरीदी, लाला खदाब कुल लाला, और वाजिबुल एहतराम वालिदे मोहतरम की खिदमत अकदस में उन्होंने सलाम पेश किया है। अल्लामा दुआगो ने ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब। यार आपने एक नाम जो है ना अपने इन कॉपी पेस में खत्म कर दिया, हमारे नसीम कुरैशी साहब का, हम नसीम कुरैशी साहब को भी सलाम भेजते थे। अरे नहीं है यार, इमरान रियाज नसीम कुरैशी, सॉरी सर मुझे ऐसे लगा नसीम अंकल का नाम नहीं है, गो के वो शामिल नहीं होते शो में, मगर यार हमारे दिलों में तो है ना, यानी कि समझ रहे ना आप, ओहो मुश्क आ गए हैं। कह रही है अस्सलाम वालेकुम डैशिंग डैशिंग, क्या हाल है, जादू भरी आवाज सुनकर जहर तारी कर दिया, हाय अल्लाह जी ना करो, आज दिल गवाही दे रहा था कि डैशिंग शो करेंगे। ऐसे किस दिल पर पहला सॉन्ग मेरे दिल की आवाज, क्या बात है, सुने तुमने पसंद, वाह। और ट्रैक जो चलाऊंगा वो भी आपको पसंद आएंगे। समय आ गया, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? सलाम टू ऑल लिसनर्स, मिस किया आपको, और जनाब असी भी बहुत मिस किया तुहानू, लेकिन ये बताओ मसरूफियत कैसी रही हैं जी? ते हैं जी, और आ गई हैं जनाब संजू, संजू क्या कहती है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सलामती और आफियत की अनगिनत दुआएं नदीम हमेशा शाद व आबाद रहे। बहुत दिन बाद इतनी दिलकश आवाज सुनकर दिल खुश हुआ, प्रोग्राम की कमी महसूस होती रही थी, कैसे मिजाज है? मिजाज बखैर, आपको हम लिसनर्स की याद आती थी? नहीं इतनी याद आती थी कि आपको बता नहीं सकता, है नहीं संजू, आपको तो ख्वाब में भी देखता था, डर के उठ जाता था। मजाक कर रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आमद ने 100 पर रौनक बढ़ा दी है नरीम, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। मेरी प्यारी सी जरीन नूर, प्यारी सी रुबाब, काबिले एहतराम नौरीन बहना के लिए ढेरों प्यार, कह दें कह दिया। राना और आगे बढ़े भाई जनाब, और इसी तरह शामिल रहे शो में, रौनक रहती है आप लोगों से। फैसलाबाद से हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ भी आ गई है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे भैया जी, मिजाज शरीफ कैसे हैं, सदा हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन रब्बुल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सी बहना, आप भी हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, याद रहें, आबाद रहें। पिछले संडे आपका शो आना है याद था, मगर आपको पता है नहीं पता, बच्चे कराची से आए हुए हैं, अरे क्या बात है, तो बस मसरूफियत की वजह से भूल गई, जब FM ऑन किया तो महफूज साहब अपने शो से हम सबको महजूज कर रहे थे भाई, क्या वो कहता है महफूज, म्यूजिक मस्ती और महफूज, महफूज का शो भी बहुत अच्छा होता है, बेहतरीन किस्म का आरजे हमारा, क्या बात है। और हमारे एक ऐसा भी लिसनर है जो सिर्फ सुन रहा होता है, रिकॉर्ड भी कर रहा होता है, जिसका नाम है रेहान। रेहान का भी मैसेज आ गया है, क्या मैं नदीम भाई सुन रहा हूँ, रेहान हूँ, सुनता हूँ, रिकॉर्ड घर पर हूँ। अच्छा, रिकॉर्ड भी हो रहा है और घर पर भी है, ये बड़ी अच्छी बात है भाई, घर पर भी। पसंदीदा नाश्ता क्या है तुम्हारा, पहले ये बताओ। आलू के पराठे, अरे आलू के पराठे भी लोग नाश्ते में खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। चाय, हाय हाय, ये जरूर बता रहे हैं आप लोगों ने सबने। नरीन मैंने आपने भी बताना है, संजू आपने भी बताना है, और समय तुमने भी बताना है। संजू भैना से पता चला आपने बहुत मिस किया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भैया का। बिल्कुल, आप सबको बहुत मिस करते हैं। सलाम, कैसे हैं वाले साहब? संजूर बाप को और तमाम सुनने वालों को सलाम गाए। ये भी हमारी प्यारी सी बहन आ गई, क्या बात है भाई, क्या बात है, रौनकें लग गई हैं, रौनकें लग गई हैं। और पसंदीदा नाश्ता भी तो दसो, हमारा वो रह गए हैं, उमिर बाप आएंगे थोड़ी देर बाद। और भी हमारे प्यारे आप लोगों के मैसेज, एनर्जी लेवल जो है वो आप यकीन माने बढ़ गया है। तो गाने की जानिब तो अभी आपको ले जा नहीं सकते, उसकी वजह ये है कि अभी हम छोटी सी ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद आपको गाना सुनाएंगे, उससे पहले पहले हम ही आपसे बात करेंगे। नाश्ते के हवाले से बात हो रही थी कि पसंदीदा नाश्ता क्या है आपका। कुछ लोग जो है वो लस्सी का नाश्ता बहुत पसंद करते हैं, कि भाई नाश्ते में लस्सी होनी चाहिए। चाय और स्लाइस तो ये एक आम सा नाश्ता है, आम इसको इस वजह से कहते हैं कि ज्यादातर लोग जो है वो चाय और डबल रोटी, अब डबल रोटी के साथ मक्खन भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं सिके हुए टोस्ट के साथ, और कुछ लोग जो हैं वो ऑमलेट बना लेते हैं टोस्ट के साथ, फ्राई अंडा भी होता है। अब ये वो नाश्ता है जो कि ज्यादातर इस्तेमाल होता है। अब कुछ लोगों को पसंद है या नहीं है, खाना है बस क्या करें, ओए कुछ नहीं का तो यही खिला दो। इसी बात पर हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के जाने।
1: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
2: This program is brought to you by
3: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
2: And आज ही Hire Mini LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं And
4: Hire T3 AC Expert Extreme T3 Inverter for Extreme Heat Hire
5: FM Like us on facebook.com/fm247365
6: fm247365
7: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
0: ویلکم بیک سنوں، جنہوں نے ابھی ابھی جوائن کیا ان کو بتاتے ہیں، جناب میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو انہیں سنے، ہیپی آرز میں میں ہوں آپ کے ساتھ۔ ناشتے کی ہو رہی تھی بات، یہ باتیں بہت آگے تک چلیں گی بھائی، بہت آگے تک چلیں گی، مگر کسی نے اگر مجھے نہیں بتایا کہ اس کو پسندیدہ ناشتہ کون سا ہے تو خیر تو ہوتا رہے گا، اور ابھی ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ایک بہت ہی پیارے سے ٹریک کی جانب. یہ کور ہے ملکہ ترنم نور جہان کا, اور یہ ڈیڈیکیٹ کریں گے آپ سب کو ہمارے علی الدین یوسف زئی صاحب کی جانب سے. ایلو پڑھو.

वेलकम बैक। हवरे माही किथे रह गया भाई, सन वाले नहर वाले पुलते पर आ गए। मतलब इसमें वादा खिलाफी है कि महबूब को नहर के पुल पर बुलाया और खुद कल्टी हो गया, यानी कि गायब हो गया। जिस पर महबूबा ने ये गाना गाया, सानू नहर वाले पुल पे बुला के, तो पता नहीं माही किधर रह गया भाई, अब कहाँ रह गया भाई। खैर जी, आपके मैसेजेस आ रहे हैं 3636 पर और नेशी के हवाले से पूछा, किसी ने बताया नहीं अभी तक। मैसेजेस सामने है, मुश्क का मैसेज आ गया है, कह रही मुझे नाश्ता करना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए फेवरेट कोई नहीं है। गलत बात। अच्छा चले ठीक है, आपको पसंद नहीं है नाश्ता, मगर फिर भी अम्मी जबरदस्त मुंह में ठूसती हूँ, नाश्ता कुछ ना कुछ तो करती होंगी। तो वो चीज जो मजबूरी में नाश्ते में आप खाएं और कहें चले ये खा लेता हूँ, खा लेती हूँ, कोई बात नहीं, वो बताएं। मतलब भागने नहीं दूंगा मैं, बताना पड़ेगा। मुश्क आपने बताना है, फौरन से बेहतर बताना है मुझे। और संजू क्या कहती है, मुझे कभी कभी नाश्ते में घर का पराठा, हरी मिर्चों वाला ओम, मलाई वाली स्ट्रॉन्ग चाय, और रोजाना बेहतरीन चाय और पापा, वो भी एक पापा बस। यानी कि अच्छा ओके, आजकल नाश्ता खाना खाने को दिल नहीं चाहता है। लजी क्या हो गया, दो ही वजह होती है, एक तो वजह दिल की होती है और एक वजह जो है वो सॉरी मैं बता नहीं सकता। क्यों नहीं दिल कर रहा है नाश्ता करने, हो हाँ बताओ। रात को या तो आपने बहुत ठूसा होगा खाने, उसके बाद दिन को मतलब इतना टाइम ही नहीं, दिन नहीं कर रहा खाना खाने को। आप भी तो बताए आपका पसंदीदा नाश्ता कौन सा है, बताएंगे बताएंगे। आपकी आवाज कुछ गड़बड़ लग रही है, मतलब क्या कैसी लग रही है बता दो। बता दो। नौरीन कह रही है, क्या कह रही है हाँ जी ये कह रही है, मेरी प्यारी सी बहना संजीदा जरीनूर रबाब नसरीन बहना और अयूब भाई को खुसूसी सलाम और ढेरों दुआएं, और तमाम हसीन तरीन जमातों को भी सलाम और ढेरों दुआएं। और नरीन भाई मेरा

0: पसंदीदा नाश्ता पहले सुबह उठकर कहवा कॉफी और लीमू है, कहवा कॉफी और लीमू का फिर एक घंटे बाद जो और नट्स का पुरेज खाती हूँ और कभी रात की बची हुई रोटी गरम करके चाय के साथ। अच्छा कलेक्शन पसंद आ रही है उनको प्लेलिस्ट की, लेकिन ये आपका नाश्ता समझ में नहीं आ रही है ना, ये न जा रही है कबूतर की तरह फड़फड़ा रही है। इतनी कॉफी नहीं, पहले कहवा फिर कॉफी फिर नींबू का एक गिलास एक घंटे के बाद, और फिर जौ का गिलास, जौ मेरा ख्याल है जौ लिखा हुआ है, और फिर नट्स यानी कि वो क्या कहते हैं मूंगफली के दाने। अम्मी अम्मी भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, नाना गए दिल्ली, दिल्ली से लाया बिल्ली, बिल्ली ने दिए बच्चे, अल्लाह मियां सच्चे। भाई समझ नहीं आ रही है ना, आ रही है ना जा रही है कबूतर की तरह फड़फड़ा रही है। जरा नौरीन बहन समझाइए ये कैसा नाश्ता है, समझ से बाहर है। काश हम जुदा ना हो, ये गाने की फरमाइश की है, सोचेंगे इस बारे में। अभी तो ऐसे ही चल रहे हैं गाने, बाबा को पसंद भी आ रहे हैं हालांकि, यानी कि समझ रही है ना। आ गया समी 15-16 मिनट के बाद, ये कहीं और शो कर रहा था खुद, कोई अच्छा सा सॉन्ग हमारी उनके लिए भी नहीं जाना। नदीम भाई भूल नहीं जाना भाई, भूले तो तुम हो। एग्जैक्टली 20 मिनट तुमने बात की उनसे, शो सुना नहीं तुमने कि हमने क्या क्या बातें की। पहले बताओ नाश्ता क्या पसंद है तुम्हें, और तुम्हारी उनको फिर उनको गाना डेडिकेट करेंगे। हैं जी ते हैं जी, समी समझ रहे हो ना, यानी कि हाँ हम सब समझते हैं। वैसे तो चाय पापा पसंद है, कभी कभी पिज्जा पराठा शौक से खाती हूँ। हाय हाय जरीन नूर क्या बात है, चाय पापे। अच्छा ऐसा भी है कि नाश्ते में जैसे कि मैंने कहा आपको कि चाय और डबल रोटी के स्लाइस सिके हुए, बगैर सिके हुए, मक्खन के साथ, ऑमलेट के साथ, ये एक आम रूटीन है। ये आप समझ, अच्छा ये आम रूटीन है, ये तो खाना ही पड़ता है, अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, तो बोले भाई मुझे तो यही पसंद है भाई, मैं स्लाइस और चाय, यानी कि समझ रहे ना आप। तो इसी तरीके से जैसे कि चाय और पापा, ठीक है ना, ये भी एक आम सा नाश्ता है, ज्यादातर होता है, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा पसंद होता है। तो यानी कि समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको नाश्ता पसंद कौन सा है, चाहे वो आप डेली बेसिस पर खाते हैं या नहीं खाते, जरूरी नहीं है कि आप वो खा रहे हो। पसंदीदी नाश्ते की बात हो रही है, गाना चलाए ना भाई, ब्रेक आने वाली है, अभी नहीं चला सकते, अभी आपकी मीसी जी देखेंगे हम। अच्छा जनाब, और सलाम सुनियो, एक जॉब है तो कर लो भाई, क्या लिखा हुआ है, टैंकवा यानी कि तनख्वाह 3 लाख रुपए है, काम सिर्फ इतना है बस बिजली के तारों पर गीला कपड़ा मारना है। अगर किसी भी लिसनर का ये जॉब करने का मूड हो तो वो फौरी तौर पर मुझसे रابطہ करे। ये कह रहे हैं सलीम मेमन साहब, सही जा रहे हैं। अब इसके जवाब नहीं देना चाह रहा मैं, अब है जवाब मेरे पास इसका। मानूर आ गई हैं हमारी प्यारी सी बहन, कह रही बाबू आपको, अयूब आफरीदी भाई को, मुश्को पखर राग लेदा शोकान, और अस्सलाम वालेकुम सलाम मशी वेलकम, वाह बड़े दिनों बाद आवाज सुनी उन्होंने। और हमारे लाला गायब है यार, हमारे लाला गायब भाई, लाला किधर हो यार, आ जाओ आ जाओ। समी कहते हैं कि मैंने खाया है हलीम पराठा और अंडा, हमारी वो चाय पराठा खाती हैं। अरे भाई ये खाया क्या है ये नहीं पूछ रहा, पूछ ये रहा हूँ पसंदीदा नाश्ता, यानी कि समझ रहे ना। जो आपने तीसरा इसके बाद मैसेज जो किया वो मैंने पढ़ लिया, और यही पसंद है उन्हें चाय पराठा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, तुम्हें क्या पसंद है और आपको अंडा पसंद है। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो भाई। हाँ जी समी साहब, गाना डेडिकेट कर देंगे, डोंट वरी डोंट वरी। और जनाब कौन आ गया? फरीदा बुरहानुद्दीन आ गई हैं, करिए सलाम। भैया कैसे हैं आप, की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे नाश्ते में मलाई रोटी बहुत पसंद है। आप तो मुझे भूल ही गए, कहाँ से भूल गए? मतलब नाश्ते में मलाई रोटी, मलाई मिलती कहाँ है आजकल? मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलती है, लेकिन पसंद की बात हो रही है, महंगे सस्ते की बात नहीं हो रही। बड़ा जबरदस्त भाई, अच्छी बात है, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ आया सामने हमारे, मलाई रोटी। संजू कहती हैं आपकी आवाज कुछ गड़बड़ लग रही है। अजी गड़बड़ क्या लग रही है संजू, जरा बताइए। जैसे ठंडा बहुत पिया हो। ले जी, हम तो ठंडा वैसे ही नहीं पीता हूँ, यकीन मानिए, मैं हकीकत बता रहा हूँ, अपनी आदतों में से एक आदत अपने तमाम लिसनर्स को बता रहा हूँ। मैं शदीद ठंडा नहीं पीता, न पानी, और ये गर्मी हो या सर्दी हो मैं पानी पीता हूँ नॉर्मल। गर्मियों में थोड़ा सा, नॉर्मल से थोड़ा सा बेहतर हो ऐसा पानी पी लूंगा, लेकिन ठंडी चीजें तो, यानी कि समझ रही है ना आप? अच्छा ये नहीं कि मैं अपने गले के लिए ऐसा करता हूँ, मेरी आदत है बचपन से, ठंडा पानी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं। हाँ चाय ठंडी पी लेता हूँ। हैरत अंगेज बात है ना। जाएंगे एक ब्रेक की जानिब।
1: This program is brought to you by
2: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost, No Worries.
1: And आज ही Hire Mini LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं. And
3: Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire.
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
5: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या?
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाइए,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: वेलकम बैक। जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो NA सोनियो। हैप्पी आर्ट्स में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब। 3 बजे तक और ये अल्लाह गुल्ला जारी हो सारी है। मैसेजेस कर रहे हैं आपके, चार स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है कि भाई आपका पसंदीदा नाश्ता कौन सा है, नाश्ते में पसंद क्या है आपको, ये पूछा जा रहा है। और हमने जहां पर सिलसिला मुनकता किया था वहीं से इसको जोड़े हैं, यानी कि संजू के मैसेज से। और कह रही है गीत गजल वाली रोमांटिक आवाज जिसमें बेस है, हाय अच्छा बेस है, उसकी वजह बताता हूँ अभी आपको, पहले आपकी मैसेज पढ़ लो। तो बाप सो रही है, व्हाट्सएप उनका बंद है, अब पछताएंगी, इतना दिलकश शो, हाय हाय आधा निकल गया। जीती रहे, मुस्कुराती रहे, उसको आराम करने दीजिए आप। और आपकी इसी आवाज की बात पर संजू जरा ये गाने सुने। है जी हैं जी, अब गाने की जानिब भी जाना चाहिए ना, बातें ही थोड़ी करती रहनी चाहिए। और आपके मैसेजेस अभी बहुत सारे मौजूद हैं, वो जरूर हम चलाएंगे। तो संजू जी एलो फड़ो।

ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਸੁਣਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਏ ਪਿਆਰ ਆਸੇ ਮਜ਼ਰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਕੋ ਟ੍ਰੈਕ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਪਸੰਦ ਮੈਸੇਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਕੀ ਚੋਇਸ ਪੇ ਹੀ ਸਬਕਾ ਨਾਮ ਆਪਕਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਸਕੋ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ 3636 ਪਰ ਔਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੋ ਕੌਨ ਸਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਯਾਰ ਅਬ ਕਿਉਂ ਬਈ वजह तो बताइए क्यों नहीं बता रहे अच्छा भाई वहीं से कंटिन्यू करते हैं हाय संजू का गाना बहुत अच्छा लग गया है और कह रही कल से बहुत खुश हूं ऐसा लग रहा है जैसे कोई खोया हुआ सुकून मिल गया हो और किसी अपने का मैसेज पढ़कर चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है बिल्कुल ऐसा क्यों हाय अल्लाह जी दिल में गुदगुदी हो जब होती है ना किसी के मैसेज से तभी चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और वैसे आपने जो सुकून का बात की और कल से अच्छा लग रहा है आपको अल्लाह ताला इसी तरह रखे और हमारी दुआ है आपके लिए बेतहाशा हैं जी ते हैं जी फातिमा नूर कहती हैं कि भाई आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़िया नदी भाई अस्सलाम वालेकुम फातिमा नूर कराची से आप सलामत रहे आपके वाले साहब भी सलामत रहे आमीन शुमामी भाई मेरा मैसेज नहीं पढ़ता और क्या लिखा हुआ है पता नहीं लगाया बल्ले लगाया तो मैं सुन रही हूँ आप जरूर मैसेज पढ़िए आपका मैसेज हमने पढ़ लिया है जनाब डोंट वरी आज कोई भी शेर अगर आया तो हम वो शामिल शो नहीं करेंगे पहले बता दें भाई शुक्रन कहा है संजू ऐसा ना कहा करो यार अच्छी बात नहीं है आप तो मुझे भूल ही गए थे अच्छा ये लास्ट हुआ था मेरे पास अभी भी मौजूद है मलाई की दो पैकेट मौजूद है भाई फरीदा बुरहानुद्दीन के पास भाई उनको नाश्ते में बहुत पसंद है पीरा था और मलाई क्या बात है हैं जी ये थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज सामने आई है ना नौरीन मैंने कहती है ब्लैक कॉफी लीमू डालकर अच्छा ये हुई ना बात और जो ड्राई फ्रूट्स का दलिया पसंद है और सुबह नाश्ते में खाती हूँ नदीम भाई कितनी आसानी आसान उर्दू में आपने लिख दिया उससे पहले क्या लिखा हुआ था जो मैं समझ नहीं पा रहा था पहले सुबह उठकर कहवा काफी और नींबू का फिर एक घंटे बाद जो और नट्स का वो ही यार उसको क्या कहते हैं कॉर्नफ्लो टाइप के पता नहीं क्या होता है वो मैं भी बताता हूँ दलिये को जो कहते हैं दलिया टाइप का होता है और उसमें वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं अरे वाह वाह भाई वाह भाई वाह वाह वाह वाह हमारा क्या बात है क्या बात है क्या बात है मुश्क आ गई है और की थी है जबरदस्ती तो कोई करता नहीं है बॉइल एग एक सैंडविच मक्खन मारकर लेती हूँ कभी कभी ये फेवरेट है बॉइल एग एक सैंडविच मक्खन लगा हुआ ओह वाह भाई वाह मानूर को बेस्ट विशेज चाचू को सलाम चाचू अच्छा अयूब आफरीदी लेकिन वो तुम्हारे चाचू जो है ना वो गायब है उनको गाना डेडिकेट करके ही बुलाना पड़ेगा लगता है समी के चाहे गरीबों वाला नाश्ता अच्छा जी कह रहे हैं यही पसंद है और मुझे एग गरीबों वाला नाश्ता अबे गरीबों वाला नहीं इंटरनेशनल नाश्ता है और नदीम भाई सॉन्ग अच्छे प्ले नहीं हो रहे नहीं तो मुझे पसंद नहीं आ रहे भैया लोगों को पसंद आ रहे तुमको जरा तेज तेज गाना चाहिए तो हम तुम्हारे लिए अभी गाना अभी चलाने वाला है डोंट वरी कहाँ गया गाना हाँ तो अभी हम गाने की जाने भी जाते हैं और समी की जानिब से उनकी उनको होने वाली दुल्हन को जो है वो ट्रैक डेडिकेट करेंगे आपका पसंदीदा नाश्ता कौन सा है नदी मैं अभी बताऊंगा बहुत सारे नाश्ते हैं मेरे पसंदीदा मैं तेरे को क्या क्या बताऊं मैं लेकर आ जाऊंगा अरे नहीं लाना नहीं है भाई जान हम बताऊंगा हलवा पूरी इतनी खास पसंद नहीं है यार मुझे वैसे समी यकीन मानो हलवा पूरी सही है बस खा लिया एक होता ना पसंदीदा नाश्ता हलवा पूरी अच्छी लगती है ऐसा भी नहीं कि बुरी लगती है मतलब आप इसे अंदाजा लगा लीजिए कि हलवा पूरी सामने हो तो बहुत ज्यादा तीर मारा ना मैंने तो डेढ़ पूरी खा लूंगा एक पूरी बस एक पूरी खा ली तो उससे भी पूरा हो गया एक पराठा ये भी बस सही है चाय स्लाइस ये भी बस सही है
अच्छा आप लोग गैस करें कि मुझे कौन सा नाश्ता पसंद होगा, ये ज्यादा पसंद है। मतलब आप लोग मुझसे पूछ रहे हो ना कि नदीम भाई आपको कौन सा पसंद है, मैं तो पूछ ही रहा हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आप लोग बताएंगे मेरे को। तो आप लोग गेस करो कि मेरे को कौन सा नाश्ता पसंद है। फौरन से बेहतर गाने की जानिब जाएंगे जनाब, ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं समी की जानिब से उनकी होने वाली दुल्हन के लिए। एलो फड़ो।

0: वेलकम बैक कहेंगे, सादगी तो हमारी क्या बात है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपको नाश्ते में ये पसंद है, डैश सही बचाना ना, वो है मन संजू सही बचाना और शुक्रिया अदा किया है उन्होंने जरीनूर का। और खाली जगह पर तो आप पुर करें, खाली जगह आप पुर करें, मुश्क ने तो तुक्का लगा दिया। हम तो के पर यकीन नहीं करते, तो के पे मतलब तुक्के पे। समी कीता है नदीम भाई, वैसे लड़कियां सही घर वालों के राशन की बचत करती हैं, एक टाइम का तीन टाइम खाती हैं, थोड़ा थोड़ा खा एक टाइम का खाना बाकी तीन टाइम खाती है। ये वैसे मैंने ऐसे ही नोट किया है, खाना जब परोसा होगा तो जो लड़कियां हैं थोड़ा से खाना खाएंगे, आधी रोटी खा ली, हाफ रोटी, चाहे वो घर की चपाती है या बाहर की तंदूर की, और उसके बाद बस मुझे भूख नहीं है, सामने परेशान भाई, वालदैन परेशान, भाई क्या हो गया, खाना तो खाओ, नहीं नहीं मुझे बस भूख नहीं है, इतना खा लिया, और आधे घंटे के बाद फिर आधी रोटी, फिर आधे घंटे के बाद रोटी, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, ये सीन मैंने देखा हुआ है। और मेरी समझ नहीं आता लड़कियां कैसे इतना काम करती हैं, इसी तरह करती हैं भाई, ये आधी आधी रोटी जो है वो एक टाइम की तीन चार हो जाती है। और जरा इस पर रोशनी डालिए भाई, मैं तो पूरी टॉर्च डाल रहा हूं भरपूर तरीके से। नदीम भाई मेरी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, सब सुनने वालों से दुआ की रिक्वेस्ट है, ऑपरेशन है उनका। भाई आप सबसे गुजारिश है कि समी की जो आंटी हैं उनके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, ऑपरेशन है उनका, और बिल्कुल दुआ करनी है, दुआ करनी है, कोई यकीन मानो पैसे नहीं जा रहे, कोई वक्त जाया नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड लगने हैं, आंखें बंद करो, दिल से दुआ करो, या अल्लाह समी की आंटी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाना और उनका ऑपरेशन क्लियर करवाना, आमीन शुमामीन, बस इतना सा टाइम लगना। थैंक्स सॉन्ग के लिए जरीन नूर ने कह दिया। महनूर जी ठीक है, दोनों मिलकर ये जॉब करते हैं, सिली मैं पकड़ लूंगा, हाँ सलीम मेहमान, ये तो गलत बात हो गई, कह रहा सीढ़ी मैं पकड़ लूंगा और तारों पर कपड़ा मार लेना, 2 लाख आप और 1 लाख मेरा। ये तो महनूर ने पहले बोल दिया सलीम मेहमान भाई, ये आपने उसी की बात को दोहरा दिया, सिर्फ 2 लाख और 1 लाख कह दिया, यही चीज उसने ही कही है, आप कोई और लाए कोई चीज, यानी कि समझ रहे ना आप। चले आपकी इसी बात पर हम चलते हैं एक ब्रेक की जाने।
1: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है, शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: This program is brought to you by
3: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, True Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost, No Worries.
4: And आज ही Higher Mini LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.
5: And Higher T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Higher.
6: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
7: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है, तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
8: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.

back king is Sonny Waps up good. मैसेजेस आ रहे हैं आपके KHI स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड करेंगे आप 3636 पर. जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब मेरा नाम नदीम अख्तर. प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने. हैप्पी आवर्स में मैं हूं आपके साथ, आपका मेरा साथ 3 बजे तक. और पूछ मैं ये रहा हूं कि आपका पसंदीदा नाश्ता क्या है, जो कि आपको नहीं बता रहा. सलीम अहमद ने भी नहीं बताया, वो तो बस तारे साफ कर रहा है गीले कपड़े से. अच्छा नदीम भाई, आपने हमारा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा? ये कह रही है रीमा. रीमा तुमने मैसेज ही अभी किया? कैसे हो सकता है बहना कि आप लोगों की मीसी जाए हूं और मैंने ना पढ़ा हो? अच्छा मैं चेक जरूर करता हूं, मेरी आदत है. देख लें कि रीमा का मैसेज आया था या नहीं आया था, या रीमा ने अपने तौर पर कह दिया कि मैंने मैसेज किया था. इस तरह भी तो हुआ था ना. और खैर जी, ऐसा सिलसिला है कहा. और नहीं नहीं नहीं नहीं, रीमा आपका मैसेज ये पहला मैसेज है. यानी कि समझ रही है ना आप, ये पहला मैसेज है. हैं जी, तो खैर जो भी है, आपका मैसेज आया सना गोबर और आपने कहा कि नदीम भाई आपने हमारा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा, और अब हमने आपका मैसेज पढ़ दिया है. यानी कि समझ रही है ना आप, लेकिन मैसेज क्या है यही तो नहीं समझ नहीं आ रहा. तो जो मैसेज आप करें, अच्छा एक और आ गया इनका. अल्लाह पाक समी की आंटी को जल्द अज जल्द सेहतियाब करे और ऑपरेशन कामयाब करे. आमीन सुमामीन. रीमा रीमा ये हुई ना बात, ये आया मैसेज आपका. और दादू से अनवर पिताफी भाई जन आ गया है और सलाम सबको. और कह रहे हैं सिन्नी गाना, अनवर पिताफी भाई सर आंखों पर आपकी फरमाइश. कैसे हैं आप? ठीक ठाक. कचहरी कैसी है आपकी? कहाँ है आजकल ये भी बताइएगा. सुनियो मैं अभी ससुराल जा रहा हूँ मफ्ता तोड़ने के लिए. बल्दिया सलीम मेमन भाई, अयूब आफरीदी भाई गायब है. अच्छा मेरा ख्याल है शायद वो सफर वफर पर ना गया हूं. सफर कौन सा? उर्दू वाला, अंग्रेजी वाला नहीं. लेकिन उनकी जानिब से गाना तो जरूर डेडिकेट करेंगे. खैर जी कुछ मैसेजेस और शामिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक आपकी पसंद की मतलब फरमाइश की जानिब जाएंगे. डैशिंग कहीं पड़ा था कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा. 100 साल पहले कैसे हो सकता है? मोमबत्ती से रोशनी डालें. हम 100 साल पहले क्यों जाएं भाई? मैं टॉर्च से रोशनी डालूंगा, बल्कि मोबाइल की लाइट से रोशनी डालूंगा. यानी कि समझ रही हो ना, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था. जब प्यार होता है ना, किसी से भी प्यार होता है, ये बात मुश्किल जहन में रखना. तो सच्चा प्यार की, सच्चे प्यार की बात कर रहा हूं. तो वो प्यार जो होता है ना, वो 100 साल नहीं, 1000 साल जितना पुराना होता है. क्योंकि 1000 साल पहले भी जो मोहब्बत और प्यार सच्चा किया गया, वो भी ऐसा ही था और ये भी ऐसा है. यानी कि समझेंगे ना, सीरियस सीरियस बात बता दें. चलो भाई इसी बात पर, अच्छा मुश्किल मैसेज के बाद भी कुछ पढ़ लेते. अरे लाला आ गए भाई, लाला का मैसेज पहले पढ़ ले. जहर जिगर, रात वापस पहुंच गया जिगर, शो 2 बजे के बाद सुनना शुरू कर दिया. मानूर मुश्क और सबागुल को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम. जिगर जी पी एन को साखी मैं शब सॉन्ग सुना दो. जी बिल्कुल सुना देंगे. ये लाला अभी आपको हम इतनी देर से याद भी कर रहे थे और आप आ गए हैं. और भी मैसेजेस बहुत सारे हमारे पास महफूज हैं. प्यारी सी जरीन शुक्रिया सॉन्ग का, बहुत सारी दुआएं सेहत अदा करे अल्लाह आमीन. आज वक्त कुछ ज्यादा ही जल्दी गुजर गया संजू, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में. तो भाई इसी बात पर हम लेकर जा रहे हैं आपको एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब. और ये ट्रैक की रिक्वेस्ट की थी हमारी प्यारी सी बहना ने फैसलाबाद से नौरीन ने. तो नौरीन आपके लिए ट्रैक एल्लो फड़ो.

0: जैश कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैश कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
1: शराय तो जवाबित लागू है।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: एंड आज ही हायर मिनी LED TV लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए।
5: And Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: Happy Hour with Nadeem Akhtar.

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको और जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दे जना मेरा नाम है नदीम अख्तर प्यार से आप लोग मुझे कहते हो सुने अभी आर्स में मैं हूँ आपके साथ आपका और मेरा साथ 3 बजे तक है और इसमें शामिल शो में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए QHR लिखिए स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम प्यारा सा मैसेज जाओ उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर मैसेजेस आपके आ रहे हैं जनाब और यहीं से कंटिन्यू करते हैं गाना पसंद आया भाई संजू को बहुत बहुत शुक्रिया और लाना कहते हैं सलीम भाई अगर आपके पास नौकरियां हैं तो मैं और नदीम हम दोनों भी ज्वाइन कर लेंगे आपने और महानूर ने अपने बहुत कम कीमत लगाई है लेकिन मैं और नदीम 5 लाख से कम नहीं करेंगे भाई हम अयूब लाला वो जॉब आपको पता कौन सी कह रहा है बिजली की तारों को गीले कपड़े से साफ करना है महानूर ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दे दिया था सलीम भाई अगर ऐसा कोई नौकरी हो तो फिर जरूर बता देना मतलब इससे हटकर नौकरी हो तो सलीम भाई नहीं बताना हमारे लाला ने पूरा सुना नहीं था मुश कहती है कि डैशिंग कुछ दिन पहले ये सॉन्ग अच्छा लगा था सुनकर बहुत रोई थी पोइट्री दिल दुखाती कौन सा तुम हमको याद रखना अरे वाह भाई तुम क्यों रोई थी भाई अच्छा जी चाचू डैशिंग के शो में जल्दी आया करें आपका आना अच्छा लगता है डैशिंग खुश होते हैं तो मैं भी खुश होती हूँ आए हाय गुड है गुड है और मेरी और कसाई की भी कोई आदत नहीं है ठंडा पानी पीने या बर्फ वाला पानी पिए बल्कि प्यास ही नहीं बुझती मेरा भी ऐसा ही हाल है फरीदा बुरानुद्दीन का ये मैसेज है मेरे पास तो ठंडे पानी की कोई भी बोतल नहीं है और ना ही बर्फ है अच्छा भाई ये अजीब सी बात थी वैसे फातिमा नूर कहती हैं अरे इतने लंबे चौड़े मैसेज भाई मेरा मैसेज नहीं पढ़ा आपने वाले साहब और आपको सेहत तंदुरुस्ती और रानी हुसैन को भी मेरा सलाम जो है ना अल्लाह उनको खुश रखे और सलामत रखे और चाची को भी अस्सलाम वालेकुम अली भाई मेरा मैसेज पढ़ना फातिमा नूर के नाजी से अलीम भाई और समी की आंटी हो अल्लाह मियां सेहत तंदुरुस्ती दे और ऑपरेशन कामयाब हो जाए आमीन सुब आमीन नाश्ते को पूछा है हम संडे को रोजाना ये के नाश्ता करते हैं हल्का फुल्का स्लाइस लेते हैं और एक कप चाय पीते हैं बस हमारा ये नाश्ता एक चने का हो जाता है नाश्ता आपको बता दिया है मैं फातिमा हूँ कराची

आपको बता दिया है मैं फातिमा हूँ, कराची से हूँ। फिर नदीम भाई आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, ऐसा पढ़ा मैंने कि बस पढ़ता ही रहा हूँ। ठीक है भाई फातिमा, तुम्हारे सारे मैसेज हमने पढ़ लिए हैं। और अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब ने शुक्रिया का मैसेज किया होगा 100%। शुक्रिया का ही मैसेज है और इनका मैसेज पढ़ लो ना तो शुक्रिया का एक मैसेज जरूर करते हैं। नौरीन मैंने कहती है मैं भी ठंडा पानी नहीं पीती, एक तो सेहत के लिए ठीक नहीं और प्यास भी नहीं बुझती। और शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया। अच्छा ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को आदत है ठंडा ही पानी पी रहे होते हैं। मैं रो भी नहीं हूँ ये सॉन्ग सुनकर, काश हम जुदा ना होते। अच्छा मैं एक बात बोलूं नौरीन मैना, जिंदगी को आगे लेकर चलो, है इसकी कमी जो है ना ये कभी पूरी नहीं हो, ये खला ऐसा है कि ये कभी पूरा नहीं होता। अगर खला आ जाए तो ये जिंदगी में फिर ये कोई और पूर नहीं कर सकता, ये अपनी जगह है। लेकिन बस यानी कि समझ रही है ना आप। अच्छा अच्छा मतलब ये कि है मीठे आंसू हों ना कि उनको दर्द पहुंचाने वाले, यानी कि समझ रही है ना। आपको चाय पराठा पसंद है सालन के साथ, जरीन नूर कह रही है। हाँ ये भी है सही है। और लाला समी संजीदा जी और मंसूर जी को सलाम, नवीद और मुस्तफा भाई के लिए सॉन्ग। अरे हाँ अच्छा ये अच्छा किया सलीम अहमद, मुझे याद दिला दिया, मेरे जहन से वाकई में निकल गया था, अब तो मैंने नोट कर लिया, अब नहीं निकलेगा। सुनिए मैं भी ससुराल जा रहा हूँ, मुस्तफा ने कहला बल्दिया से। अरे भाई मुस्तफा साहब और हमारे छोटे भाई साहब, आप लोगों के लिए ट्रैक जरूर चलेगा। दादू से अनवर पिताफी भाई वाला जो गाना है वो भी जरूर चलेगा, डोंट वरी अनवर पिताफी भाई। और बल्कि अब क्योंकि वक्त भी बड़ा तेजी से गुजर रहा है, क्यों ना आप लोगों की फरमाइशें जो हैं वो पूरी करते हैं। लाला आप क्योंकि थोड़ा सा लेट आए थे तो आपकी फरमाइश जो है वो हम देखते हैं अभी। वैसे तो अगर आप ना भी आते तो आपके लिए कोई ना कोई ट्रैक जरूर चला लेते। तो अभी जो है हम एक ट्रैक की जानिब चलते हैं और ट्रैक में देख रहा हूं कि कौन सा चलाया जाए। हाँ नया गाना चला दे, नया नया ठीक है भाई। तो नया ट्रैक एक चला रहे हैं, और बल्कि नया नहीं चलाएंगे ये ट्रैक है, ये हमारे मुस्तफा भाई और मंसूर के लिए ये ट्रैक है। और इसके बाद जो है एक बहुत ही जबरदस्त मेरा पसंदीदा ट्रैक है, क्योंकि मुस्तफा भाई के लिए जो ट्रैक चला रहे हैं वो तो हम नया सा ट्रैक चला ही रहे हैं, और नवीद छोटे भाई के लिए। और उसके बाद जो ट्रैक है वो मेरा पसंदीदा इस वजह से कि सिंधी ट्रैक है, और सिंधी में ये सिंधी ट्रैक्स में मुझे ये वाला गाना बहुत पसंद है। पहली फरमाइश जनाब डेडिकेशन टू मुस्तफा साहब एंड नवीद साहब, और दूसरी डेडिकेशन जो है अनवर पिताफी भाई की जानिब से आप सबके लिए। एल्लो फड़ो किथे गया भाई, किथे गया ये रहा।

0: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
1: शरायत और ज़वाबित लागू हैं।
2: This program is brought to you by
3: Hire कर नया No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
4: And आज ही Hire Mini LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं
5: And Hire T3 AC Expert Extreme T3 Inverter for Extreme Heat Hire
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: Like us on facebook.com/fm247365
9: Welcome back करेंगे सुनियो आप सबको। फौरन से बेशतर आपके मैसेजेस की जानिब जाएंगे क्योंकि वक्त बड़ा महदूद सा रह गया है। वाकई में फुर्र करके उड़ रहा है और जनाब जरीन नूर ने कहा था कि भाई आपको पराठा चाय और सालन पसंद है और उसके साथ ही रीमा का मैसेज आ गया है और कह रही है नदीम भाई आप और अयाज भाई मेरे मैसेजेस पढ़ते हैं ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ, दिल बाग बाग हो जाता है और मेरा तो अल्लाह पाक आप दोनों को बहुत बहुत तरक्की दे। बहुत शुक्रिया रीमा, जीती रहो मुस्कुराती रहो। और दो दफा मैसेज किए इसने रीमा ने। मोहम्मद खान लाड़काना से कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शौक से सुनते हैं, नाश्ते में मुझे चाय पराठा अच्छा लगता है। और अनवर बिताफी भाई कह रहे हैं सबको सलाम साईं, वालेकुम असलाम साईं, आपके लिए सिंगी गाना भी चल गया। नादिया आ गई है और कहती है सलाम नादिया कैसी हो। और मोहम्मद खान कह रहे हैं कि नदीम भाई सिंधी सॉन्ग सुनकर बहुत खुशी हुई, आए अल्लाह जी जीते रहो। अयूब लाला के मैं किसी दिन दोबारा आपके पास भी मुफ्ता तोड़ने आने वाला हूँ, सलीम मेमन कह रहे हैं। और जनाब आगे बढ़ते हैं, संजू कहती हैं सलीम भैया खुश रहे, बार बार घड़ी पर नजर जा रही है, वक्त को काश रोक सकते। हाय अल्लाह जी, हाय मेहरबान मेरी तरफ से आपके लिए, और एक एक लफ्ज हकीकत पर मबनी है, ये मेरे दिल की आवाज है, काश दिल का दरवाजा खुलने में कामयाब हो जाऊं। मेहरबान जो तू हुआ मेरा, वाह वाह वाह वाह वाह भाई क्या बात है। लाला कहते हैं जिगर इतना आप जिगर अपना तो पता नहीं, नाश्ते में जो मिल जाए खा लेते हैं। जीबीएन का पता है वो नाश्ते में मक्खन मलाई ऑमलेट और पराठा खाती है। अरे वाह भाई वाह भाई। इसी बात पर मुश्क आज आपने नदीम भाई के लिए नाश्ता भेजा है कि नहीं? अरे नहीं भेजा। फिलहाल हम अभी फौरन से पेशतर एक गाने की जानिब जा रहे हैं और ये ट्रैक जो है ये हमारे प्यारे से अयूब लाला की जानिब से हम डेडिकेट करते। कहाँ गया गाना भाई? मेरे ہے جناب گانا اور ایوب لیلا کے جانب سے یہ گانا جی بی این نگہت اور ماہین کے نام
10: پریزنٹڈ بائی حضرت گل آفیشل

वेलकम बैक। वाह वाह वाह। अच्छा जनाब, क्योंकि अब आपसे इजाजत छानी है गाने के दरमियान ही, तो साथ ही साथ चंद मैसेजेस हैं वो भी पढ़ लें। और मेरे बाप आ गए हैं, आप सबको सलाम। जरीन नूर, संजीदा को सलाम। हाय रुसिया ना कर मेरी जान सजना। हाय उमर बाब, आपका मैसेज बहुत लेट आया, अब हम आप लोगों से इजाजत भी चाह रहे हैं, तब आया मैसेज। और शुक्र है कि आवाज सुना संजीदा, जरीनूर और संजू को सॉन्ग। खैर ये अभी नहीं हो सकते हैं, अब क्या करें हम। और अयूब लाला, किसी दिन दोबारा आपके पास नफ्ता तोड़ने आएंगे, ये उन्होंने कहा था। संजू के भी मैसेज आए हैं, उन्होंने कहा है कि बेहतरीन सॉन्ग भाई लाला को, उन्होंने कहा है कि सलामत रहें, बेहतरीन। और मुश्क का कमेंट आया है जनाब, और वो चले ये लास्ट पढ़ लेते हैं हम। हाय हाय इतना लंबा। खैर जी, जिससे मोहब्बत हो उसे बताया करो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, ताकि वो भी तुमसे प्यार करे। इसे बताने का हुक्म है, सारी उम्र साबित करने का हुक्म नहीं। वाह वाह वाह, बड़ी प्यारी बात की। वफा होती दो तरफा है, लेकिन करनी एक तरफा है। जो कहता है सामने वाला करे तो मैं करूंगी, सामने वाला नहीं करता तो ना करे। हाय हाय, आपकी अपनी तरफ से आप अपनी तरफ से मुखलिस हैं और निभाते रहें। अच्छा ये लास्ट नोट भी है, बड़ा जबरदस्त मैसेज है। निभाते भी रहें मोहब्बत, वफा करनी एक तरफा चाहिए, दो तरफा तो मुआहदे किए जाते हैं। ओए होए, मोहब्बत में महबूब की खुशी से बढ़कर दुनिया में कोई मुआहदा नहीं होता। दिल अपने शिद्दतों से चाहता है और बेइंतहा मुखलिस होकर चाहता है और अपना सब कुछ मानता है। आपका मैसेज बड़ा जबरदस्त है, इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते एक बहुत प्यारा सा ट्रैक जनाब आप सबकी समातों की नजर। अल्लाह हाफिज़।

0: put your hands up.
1: Gonna dance.
2: You're listening to Music Masti. Music Masti.
3: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। तो मस्ती जारी हो सारी है, 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा और इस साथ को यादगार शानदार खुशगवार आप सबने बनाना है। कहीं पर भी आप मौजूद हैं, अपने घरों में मौजूद हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ मौजूद हैं, पिकनिक पॉइंट पे मौजूद हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, कहीं पर भी मौजूद हैं, FM 100 पाकिस्तान और महफूज आपके साथ साथ है। और स्पेशली ये प्रोग्राम जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती आपको मस्त कर देगा। 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमारा आपका साथ रहता है और 3 से 5 जो साथ होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है क्योंकि उसमें आप हमारे साथ मौजूद होते हैं। दिल की बात कीजिए, आपके दिल से निकलेगी, मेरे दिल तक पहुंचेगी, फरमाइश कीजिए जबरदस्ती, मुझे पूरी करने में ढेर सारा मजा भी है। लेकिन तेज गानों की फरमाइश करनी है 3 से 4 और सॉफ्ट मेलोडीज की फरमाइश करनी है 4 से 5। अपने राइट मैसेज में जाइए, क्या चाहे लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और लिख भेजिए हमें 3636 पर। इसके साथ साथ facebook.com/RJ Mehfooz पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे जाकर RJ Mehfooz, मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, पिक्चर स्टेटस लगा है, आइए और बताइए कौन सा गाना आपको सुनना है, कीजिए अपने दिल की बात।

0: are listening to Music Masti.
1: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? Schwabe Single Remedies मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. Dr. Hamid General Homeo और Schwabe Single Remedies भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर ना आ जाएं, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
4: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM 247365.

और राइट आ चुके हैं वापस आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। आज है संडे और संडे को फंडे बनाने के लिए आप जहां बहुत कुछ कर रहे होते हैं वहां मेरा प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, फरमाइशें कर रहे होते हैं। संडे जो है वो तमाम दिनों से जरा मुख्तलिफ होता है। संडे को सूरज भी देर से निकलता है, मतलब सूरज तो टाइम पर निकलता है लेकिन लोग जो है वो काफी देर से उठ रहे होते हैं। हमारे लेट लतीफ दोस्त भी हैं, एक एक बजे दो दो बजे उठ रहे होते हैं, नाश्ता ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट दोपहर का खाना। इसके अलावा जो सुबह उठते हैं वो भी संडे को फंडे बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए डिफरेंट किस्म का नाश्ता कर रहे होते हैं, लाइक हलवा पूरी खा रहे होते हैं, अंडा पराठा खा रहे होते हैं, आलू का पराठा खा रहे होते हैं, कुलचे नहारी पाए खा रहे होते हैं, छोले भटूरे खा रहे होते हैं। इतना हैवी नाश्ता कर रहे होते हैं कि पूरा दिन सिर्फ नाश्ते में गुजर जाए। अगर इतना हैवी मैं नाश्ता कर लूं उसके बाद पूरा दिन मैं खा नहीं सकता, फिर डिनर ही करूंगा। इसके अलावा संडे सुस्ती का भी दिन होता है, सुस्ती का दिन इस सेंस में होता है या डरो खौफ का भी दिन होता है, इस सेंस में होता है कि आपको मंडे का डरो खौफ होता है, मंडे का सोचकर आपको सुस्ती आ रही होती है, यार ऑफिस जाना है। आजकल तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद है लेकिन उस पर अगर खुली होती है तो स्कूल जाना है, जवाइयां ले लेके यॉनिंग कर करके सुबह स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज जा रहे होते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं। और इसके अलावा संडे को सोच भी रहे होते हैं कौन सी ऐसी टोपी घुमाए, कौन सा ऐसा बहाना करें कि मंडे की भी छुट्टी मिल जाए, लेकिन बॉस इधर ऑफिस में तैयार बैठा होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो मंडे को तैयार बैठा होता है, आए तो बहाना तो करें, सारे बहाने पता होते हैं क्योंकि जैसे सास भी कभी बहू थी तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी कभी ना कभी सबऑर्डिनेट था, उसको पता होता है, सारे रास्ते पता होते हैं। तो चालाकियां ना कीजिए, संडे को फंडे बनाइए और मंडे को वर्किंग डे बनाइए और ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ काम कीजिए। फिलहाल अभी अपने राइट मैसेज में जाइए, क्या चाहे लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख दीजिए हमें 3636 पर, इसके साथ साथ facebook.com/rjmehfooz। अली अजमत की आवाज साथ देंगे राहत फतेह अली खान, द ट्रैक इज जिसकी बहुत जरूरत है गरज बरस।

0: You are listening to music. Masti. Masti.
1: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफादे आमा के लिए यह पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
2: 100 FM.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
4: फ्रॉड और जाली पैगामात से होशियार रहें. फ्रॉड करने वाले जाली पैगामात और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं. ऐसे पैगामात पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम, अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूमात की वेरिफिकेशन का कहा जाए. याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है. आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके. पीटीए बैंक या सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूमात तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना. याद रखिए, पीटीए बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता. लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक न करें और अपनी मालूमात हरगिज किसी के साथ शेयर न करें. और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें. अपनी शिकायत का इंद्राज complaint.pta.gov.pk या पीटीए CMS मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या पीटीए की हेल्पलाइन 0800-55055 पर अपनी शिकायत का इंद्राज करें. व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाला पैगाम बराह रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें. इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंद्राज 1799 या complaint.nccia.gov.pk पर भी कर सकते हैं. बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbp.org.pk पर विजिट करें. याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ्फुज है. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी.
5: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
6: facebook.com/fm247365 fm247365.
7: जी मेरे दोस्तों, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज. 3:48 हो चुके हैं और इस वक्त कराची का जो दर्जे हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है. दिन में काफी गर्मी पड़ती है लेकिन शामें अच्छी हो जाती हैं. अच्छा, कल मौसम जो था वो अप एंड डाउन था. कभी साया आ जाता था और कभी हवा चलने लगती थी, कभी तेज धूप आ जाती थी. तो इस तरह से कराची का मौसम जरा अजीब किस्म का चल रहा है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. दोस्तों, दुनिया में चेंजिंग्स आ रही हैं, मौसम बदल रहा है, ग्लोबली चेंजेस आ रही हैं. उन उन जगहों पे गर्मी पड़ रही है जहां सोच भी नहीं सकते, जैसे यूरोप के इलाके जो हैं, यूरोप के ममालिक हैं. लंदन में गर्मी पड़ रही है, जर्मनी में गर्मी पड़ रही है, यूरोप के बहुत सारे इलाके जो हैं मुतासिर हैं गर्मी से. वहां पर सीलिंग फैंस नहीं होते, तो जितने भी लोग हैं पेडेस्टल फैंस खरीद रहे हैं, वहां एसीज नहीं होते तो चिलर्स लगा रहे हैं. तो किसी ना किसी तरीके से वो अपनी गर्मी को कम कर रहे हैं. और हुकूमती तौर पर भी बहुत ऐसी जगहें बनाई गई हैं जहां पर आवाम पर शावर किया जा रहा है और کسی طریقے سے وہ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ ان کو گرمی محسوس نہ ہو، بیمار نہ ہو. کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں گرمی کی وجہ سے. ان کے لیے تو 35-36 بہت ہوتا ہے، اور ہماری طرف جو ہے وہ 50 بھی جا رہا ہوتا ہے. اندرون سندھ، اندرون پنجاب 48-49-50 ہے نا، ایسے ہی ہے نا. تو یورپ میں ٹھیک ٹھاک اس وقت گرمی پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ متاثر ہیں، بڑے پریشان ہیں، پنکھے خرید رہے ہیں، چیلرز لگا رہے ہیں، خوب نہا رہے ہیں، آرٹیفیشل تالاب بنائے ہوئے ہیں، پولز میں جا رہے ہیں. لیکن ایک اچھی بات ہے، وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے، لائٹ نہیں جاتی ہے. یہ ہے بس، ہمارے یہاں جتنی شدید گرمی ہوگی اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوگی، نہ باہر نکل سکتے ہیں نہ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں. چلیں جی، اپنے رائٹ میسج میں جائیے، گیچ آئی لکھیے، اسپیس دیجیے، اپنا میسج ٹائپ کیجیے 3636 پہ روانہ کیجیے. اس کے ساتھ facebook.com/rjmehfooz. لائٹ نہیں آ رہی تو کیا ہوا، گھر کا پنکھا نہیں چل رہا ہے تو کیا ہوا، ہم یہاں سے ہوا چلا دیتے ہیں. حسن جہانگیر کی آواز میں ہم شامل کریں گے ہوا ہوا.
0: You are listening to music, Masti.

0: listening.
1: You are listening.
0: Music. Masti. Masti. Masti.
2: जी मेरे दोस्तों, यार मिला दे, दिल यार मिला दे, आखिरी का तेज गाना आपके लिए हम पेश करेंगे. 4 बजे जाएंगे हम ब्रेक की तरफ, उसके बाद आएंगे वापस. सॉफ्ट मेलोडीज का सेगमेंट शुरू हो जाएगा, हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट हो जाएगा, आपकी फरमाइशें सॉफ्ट हो जाएंगी, यानी हमारे गाने सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट सॉन्ग हो जाएंगे. आप वही होंगे, मैं वही हूंगा, बातें वही होंगी. अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख दीजिए हमें 3606 पर. इसके साथ साथ facebook.com/AZMFUZ. जुनून की आवाज, आखिरी का तेज गाना, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों.

0: You are listening to Music Masti.
1: जबरदस्त गाना आपने एंजॉय किया. बारी है आपके मैसेजेस की. रीमा में मैसेज करी है, सलाम करी है, वालेकुम अस्सलाम. आपका मैसेज मुझ तक पहुंच गया है. 6-7 मैसेजेस आ गए हैं. तहमुल मिजाजी का मुजाहरा किया करें आप. इसके अलावा आसमा फरीद ने मैसेज किया, सलाम का है, वालेकुम अस्सलाम. और असलम हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम करें, वालेकुम अस्सलाम. आपका मैसेज मैंने नोट कर लिया है, फरमाइश नोट कर लिया, बहुत शुक्रिया. शाकिर बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम. इसके अलावा सदफ मैसेज करिए, सलाम करिए, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. तहसीन ने हमें मैसेज किया है, हैप्पी संडे का है, सलाम का है, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. इसके अलावा हानिया मैसेज करिए, सलाम करिए, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. तारिक ने हमें मैसेज किया है और आपने भी सलाम का है, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइश की है, मैंने नोट कर ली है. सोनिया ने हमें मैसेज किया, सोनिया थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम अस्सलाम, आपकी भी फरमाइश ने नोट कर ली है. शुमैल अली हमें मैसेज करिए, सलाम करिए, वालेकुम अस्सलाम. इसके अलावा जावेद ने हमें मैसेज किया है, जावेद वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. जकी हमें मैसेज कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा शो है, बहुत शुक्रिया आपका. इसके अलावा सादिया ने हमें मैसेज किया है, सलाम का है, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. एक और गाने की फरमाइश, एक जबरदस्त गाना आप सबके लिए.

जी मेरे दोस्तों आ चुके हैं वापस, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। सवा चार हो चुके हैं और आप हमारे साथ मौजूद हैं। 5 बजे के बाद जो है वो गर्मी में कमी भी आ जाएगी और आपको बताया कराची की शामें बड़ी खूबसूरत होती हैं, हवा चलने लगती है, लोगों के हाथ में चाय का एक कप आ जाता है और चुस्कियां ले लेके वो चाय पी रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जितनी चाय पी जाती है पूरी दुनिया में कहीं नहीं पी जाती। हमारी रगों में खून के साथ साथ चाय भी बह रही है, हमारी नस नस में चाय है। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं, बैटरी कहलाती है, और सोने से पहले भी चाय पी रहे होते हैं और दिन में कोई 25-30 प्याली भी पी जाते हैं। ऐसे लोग हैं 25-30 कप चाय पी जाते हैं। उफ, गोरे जो होते हैं अंग्रेज वो चाय को बड़ा बोरिंग समझते हैं, लेकिन हम देसियों ने उसमें इलायची डालकर, अदरक डालकर, दालचीनी डालकर, ना जाने क्या क्या दूध पत्ती ऐसी मसालेदार चाय बनाई है कि वो भी अब चाय पीने लगे। कटिंग है, पता नहीं कौन कौन सी चाय है, जाकर होटल पे तो बैठे हैं अब 36 तरह की आपको चाय मिल जाएगी, मसाले वाली चाय मिल जाएगी आपको, मजीद आप चाय के दीवाने हो जाएंगे। तो कराची वाले हों और चाय ना पिए ऐसा हो नहीं सकता, 10 में से शायद कोई एक हो जो चाय ना पीता हो, 9 जरूर चाय पियेंगे और 9 में से आपको 5 तो ऐसे मिलेंगे जो भरपूर चाय पीते हैं। चाय चाय और चाय चाय चाय सुन के अब आप लोग कहीं अभी फौरन चाय बनाना ना शुरू कर दें, अभी गर्मी है, चाय पिए तो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाए उसके बाद। फिलहाल अपने राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख भेजिए हमें 3636 पर, इसके साथ साथ facebook.com/RJ महफूज। तेरा वो प्यार बाय मोमिना।

0: You are listening to Music Masti. Masti. Masti.
1: डेंगी एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज उरुब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/fm247365
4: FM247365
5: Pure emotions, timeless classics, and soft melodies on FM 100 Pakistan.
0: You are listening. Music. Masti. Masti. Masti.

ओके जी, आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। आसमा फरीद, आपके मैसेज करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर मैसेज करें, सलाम करें, वालेकुम असलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। महमूद हमें मैसेज कर रहे हैं, पहली मरतबा सुन रहे हैं, सलाम करें, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और खुश आमदीद। शहजादी हमें सुन रही है, वालेकुम असलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। अदीला हमें सुन रही है, अदीला बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। फरीन हमें सुन रही है, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अजीम सुन रहे हैं, अजीम बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, वालेकुम असलाम। अफजल खान हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। सना हमें सुन रही है, सना थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम असलाम। अयूब हमें सुन रहे हैं, अयूब बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, वालेकुम असलाम। आसिफ अली हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। महाम हमें सुन रही है, महाम बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। इसके अलावा मुबशर हमें सुन रहे हैं, मुबशर थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम असलाम। आप सबकी फरमाइश पे एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपकी समातों की नजर करेंगे, मलका तरन्नुम नूर जहां। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है।

0: listening. You are listening. Music. Masti. Masti. Masti.
1: क्या बात है, जबरदस्त गाना आपने एंजॉय किया और अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आन पहुंचा है। जहां रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों को रखें खुश, बड़ों का करें अदब, छोटों से करें प्यार, अपने वतन का अपने परचम का करें एहतराम, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं महफूज कर एफएम 100 पाकिस्तान को रखें अपनी दुआओं में जरूर जरूर याद। अगर आपके वालिदैन हयात हैं उनसे मोहब्बत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि दुनिया में यही आपकी जन्नत है, ऊपर जन्नत वसीला। मेहरबान हूं कि बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे दोपहर 3 बजे। जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपकी समातों की नज़र करेंगे, आतिफ असलम की आवाज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड फाइनली अल्लाह हाफिज।

0: Putting the hits into high gear.
1: High gear.
0: FM 100.
1: The hits keep on coming.
2: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
5: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Aji Higher Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol Ghar Mein Banaye, and
3: Phoenix Laga Aur Bhul Ja, Phoenix Laga Aur Bhul Ja.
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे, होशियार रहें, मोहतात रहें, अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: आम चीजों पर समझौता क्यों करें। चौबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और चौबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर.
0: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
3: This program is brought to you by
4: AGS Tubular दिखाए काम. AGS Tubular Battery दिल को है आराम.
5: And आज ही हायर मिनी LED TV लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए.
0: And
1: फिनिक्स लगा और भूल जा. फिनिक्स लगा और भूल जा.
6: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रास्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है.
7: हमने अपने आप को से 3 बार मौत देखी.
8: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा.
9: फिर उन्होंने साड़ियाँ वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया.
6: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें.
10: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा.
6: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम. मुलगीर क्रैकडाउन जारी. एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं. अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें. मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें. इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे. ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने. हुकूमत पाकिस्तान.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
11: Back to back. Only music, no RJ talk.
12: Only music, no RJ talk.
11: This is FM 100.
13: Come on.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर। इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
4: and Aaj Hi, Higher Mini LED TV Line, or Stadium Ka Mahol, Ghar Mein Banaye,
0: and

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम। हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 Hz पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
1: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: जैश कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: जैश कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी मौका अभी भी बाकी है अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना
4: शरायत जवाबित लागू है
5: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर
0: This program is brought to you by
6: AGS Tubular Dikhai Kaam AGS Tubular Battery Dil Ko Hai Aaram
7: And Aaj Hi Higher Mini LED TV Line Aur Stadium Ka Mahol Ghar Mein Banaye
0: And

0: 7 PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: And Aji Higher Mini LED TV Line. Aur Stadium ka mahol ghar mein banaye. And
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: Higher Mini LED TV ke saath 3 mahine ki Tap Mag subscription bhi with free installation 144Hz picture quality jandar banaye har match ko shandar powerful KEF British speakers aur woofers ka amazing sound kare aapko excitement se surround 3 year warranty aur 6 month free replacement ke saath aaj hi Higher Mini LED TV Line aur Stadium ka mahol ghar mein banaye. Higher, more creation, more possibilities.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
5: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी मौका अभी भी बाकी है अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना
6: शराय तो जवाबित लागू है
4: Higher No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज़

0: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
1: इसने कहा था पैसे

0: It's 8 p.m. The Sound Check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
2: Tufaan hai ye, har jeet ki pehchaan hai ye.
0: And
3: Hire T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire.
4: जैश कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैश कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैश कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
0: This program is brought to you by
6: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
7: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
8: FM 247365
9: FM 100
10: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
11: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: जैश कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैश कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैश कैश है ना।
1: शराय तो जवाबित लागू है।
2: This program is brought to you by
3: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
4: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365
2: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجئے.

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।
0: This program is brought to you by
4: Hire Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost, No Worries.
0: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
5: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों के इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: हेलो माइक चेक 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब. क्या हाल है, कैसे मिजाज है और तबीयत कैसी है? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे और यकीनन संडे एंजॉय कर रहे होंगे. और कुछ लोग बोर हो रहे हैं तो भाई बाहर निकलो घर से, घर में बैठे रहोगे तो बोर ही होगे. अच्छा भाई, आज हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे से दोस्त खालिद मैनी भी तशरीफ रखते हैं. खालिद मैनी भाई अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: सरकार कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं.
0: मैंने कहा संडे वाला दिन है और इंग्लिश ट्रैक मैं आपको सुनाऊंगा आज, और आप मेरे साथ होंगे, बचपन की बातें होंगी, ट्रैक्स होंगे. क्या इंग्लिश गानों का भी एक वैसे एक साथ है हमारी लाइफ के अंदर, है ना?
1: बिकॉज हम लोग कॉलेज से साथ
0: कॉलेज में साथ थे और उस दौर में बैंड्स का और सोलो आर्टिस्ट का ना एक मकाम होता था. वो अब मैं देखता हूँ वो कम है वैसे, है ना?
1: एग्जैक्टली.
0: और आप ढूंढते थे वो इनके एल्बम जाके, उनके जाके वो पूरी पूरी वो कैसेट्स आते थे. अक्सर हम जिक्र करते रहते हैं, अब तो खैर वो दौर नहीं है कि एल्बम बनाए जाए, सीडीज. फिर उससे पहले तो वो एलपीज का दौर था.
1: एक्चुअली अपना पोर्टल्स बहुत सारे आ गए. हम लोगों के पास एक मीडियम था कि हम कैसेट्स लेते थे.
0: सही बात.
1: अच्छा, एमटीवी देखते थे या चैनल भी होता था.
0: एग्जैक्टली.
1: सही, एग्जैक्टली. हमारे पास एक मतलब एक था. अब तो हर बंदे का मोबाइल.
0: अच्छा,
1: है
0: बात. मैंने
1: अपना म्यूजिक सुन रहा है वो, उसको जो सुनना है.
0: एक बात है, जब वो इतनी चीजें हमारे पास नहीं थी ना, तो हम ज्यादा, मुझे ऐसा लगता कि हम इंजॉय करते थे. हमें पता लग जाता था कि ये चीजें आई हुई हैं.
1: अच्छा, आई थिंक सो कि हम लोग जो म्यूजिक सुनते थे या जितना भी म्यूजिक हुआ आज तक, इवन इंग्लिश के अंदर जितना भी म्यूजिक हुआ है, वो 70s का और 80s के दौर में लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा म्यूजिक था. तो अब यार ये मुझे नहीं पता लगता, क्योंकि मैं नए म्यूजिक को मैं सुनता नहीं हूँ.
0: अच्छा,
1: सुनता ये नहीं है कि मतलब पुराना म्यूजिक ही अभी खत्म नहीं किया तो नया म्यूजिक क्या सुने.
0: बात तो सही है आपकी, बिल्कुल सही बात है. और बात यह है कि नया म्यूजिक भी अच्छा होगा. अब जो नए जो जेंजीज हैं उनको तो यही गाने जो नए हैं वो पसंद आते हैं.
1: अच्छा, एग्जैक्टली कि अब ये जो जेंजी म्यूजिक पसंद करते हैं, अब मेरे बच्चे जो म्यूजिक सुनते हैं वो मुझे समझ नहीं आता. हालांकि वो मुझे टेक्निकली आसान लगता है,
0: बाकी में
1: इजी म्यूजिक है. बट शायद वो वाली बात है यार, एक गैप होता है हर एक टाइम होता है.
0: बात बताऊं, एज के साथ भी होता है. हम लोग जैसे जाहिर है हमें वो हमारे बचपन में हम सुन रहे हैं, वो हमारी मेमोरीज में फिट हो गया.
1: बिल्कुल,
0: इसलिए भी अच्छा लगता है. आज के बच्चे हैं ये, जब 10-15 साल 20 साल बाद जाएंगे तो उनको वो ये गाने अच्छे लगे, यार वो देखो वो अच्छा.
1: देखो अब ये बता, हम लोग 40s 50s का म्यूजिक हम लोग नहीं सुनते थे. वो हमें अजीब सा लगता था कि ये क्या.
0: इवन के 70s का भी मुझे कभी कभी यार क्या
1: बहुत ज्यादा वो हो जाता था. होता क्या है कि वो साउंड, वो टोन, वो टेक्नोलॉजी, वो चीज हर दौर में चेंज होती गई ना. और जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी के साथ म्यूजिक, आप गिटार इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो पहले तो इतने गैजेट्स नहीं थे ना गिटार के साथ. आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अब तो आप सिर्फ मोबाइल के अंदर गिटार की पिन डालें और हजार किस्म के इफेक्ट्स मिल जाते हैं.
0: ऐसा ही है.
1: तो ये मतलब यार इट्स नॉट इजी डिबेट.
0: इसीलिए मैंने आज तुम्हें बुलाया खालिद मैनी कि आप आ जाओ. खालिद मैनी दोस्तों बहुत हमारे दोस्त भी अच्छे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे शोज में इनका जो है ना कॉन्ट्रीब्यूशन है म्यूजिक इंडस्ट्री में. इनकी बड़ी मतलब इनकी पार्टिसिपेशन बहुत है. इनको कोई भी उस तरह का दर्जा नहीं दे रहा,
1: लेकिन वो दर्जा मिला.
0: लेकिन ये है कि खालिद मैनी ने बहुत लोगों को प्रमोट किया है म्यूजिक में, नए नए आर्टिस्टों को बहुत प्रमोट किया है. तो बिल्कुल जनाब, आप मैसेज भी करें, KHR स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर. इसके अलावा मेरे मोबाइल पे भी मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आना शुरू हो गए हैं. सबके मैसेज शामिल करता हूं. लेकिन छोटी सी ब्रेक, मिलते ब्रेक के बाद.
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हायर कन्नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी. सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी. पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है. लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
7: Active.
8: Yummy.
7: Adorable. Seven. Say I've got a crush on you.
8: Ready to be asked to listen to you.

0: Hello, welcome back to Sunray FM 100. I am Ahmed ke saath aur saath saath messages pahunch rahe 3636 par bhi. Bilkul songs bhi humne aaj shamil kiya. Acha bhai, aaj ka din jo hota hai na hamara Sunday wala, wo sare English tracks hi hote hain. Aur aaj main koshish karta hu English, zyada tar to English hote hain, beech mein kahin kahin zara Arabic bhi shamil kar dete hain. Acha janab, doston ke messages bahut sare aa gaye, unko bhi shamil karna hai. To doston jinhone abhi radio se down kiya, Khalid Maini hamare saath hai. Khalid Maini ki badi contribution music pe और बड़े सारे कॉन्सर्ट्स इन्होंने कराए हुए हैं. एक चैनल भी म्यूजिक इन्होंने ऑन किया था लेकिन थोड़े दिन नहीं चला, उस पर भी बात करेंगे ऐसा क्यों. और जो आगाज करते हैं, मैसेज बिल्कुल पढ़ता हूं दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार करें क्योंकि आगाज करते हैं जरा म्यूजिक का. और ये जो पहला गाना मैं लगाने लगा हूं यार, मुझे याद आ गया मेरा एक गाड़ी साफ करता था, उसको इतने अंग्रेजी गाने सुना दिए, वो हालांकि कभी नहीं सुनता था अंग्रेजी, पश्तो गाने सुन रहा होता था या मैडम के गाने सुन रहा होता, लेकिन वो गाड़ी में बैठता था जो हम लोग लगा रहे थे तो उसको भी कुछ गाने अच्छे लग गए, उनमें से ये गाना था.
1: अच्छा
0: रियाज भाई, वो पुलिस का गाना लगाओ, पुलिस का.
1: अच्छा वो मेरी बरादरी है.
0: अच्छा, एवरी ब्रेथ यू टेक आई लाइक दिस सॉन्ग. मैंने बोला यार ये लो भैया, बिल्कुल लगा देता हूँ. तो बहरहाल जनाब, जबरदस्त है ये ट्रैक, एंजॉय करें, उसके बाद आप लोगों के मैसेजेस और खालिद भाई की बातें.

0: best of 90s, 80s and today with Ayaz Ahmad.
1: जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 अयाज अहमद के साथ और साथ ही साथ मैसेजेस आपके पहुंच में 3636 पर भी। और बिलावल ने सबसे पहले मैसेज कर दिया है और कह रहे हैं अयाज भाई आपको और FM 100 के तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है, उम्मीद है ठीक होंगे फिट फाट होंगे, अल्लाह का शुक्र है। और जब फ्रेश तो मैं यहां आता हूं ना तो फिर मैं हो जाता हूं। तो बिलावल भाई बहुत शुक्रिया आपका। उम्मे रुबाब भाई, उम्मे कैसे हो आप, ठीक हो खैरियत से हो? अयाज सलाम और आवाज सुनकर बहुत खुशी मिली, मौला आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। देख रहे हैं मोहब्बत चेक कर लें खालिद भाई,
2: माशाल्लाह माशाल्लाह आपसे तो सबको ही मोहब्बत
1: है। ये बात नहीं, आपके अभी प्यार है जो आप आ जाते हैं। बिलावल कह रहे हैं आपके गेस्ट खालिद भाई को सलाम एंड वेलकम।
2: वालेकुम सलाम बिलावल।
1: अच्छा जनाब, इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन लाहौर मुल्तान में हमें सुन रहे हैं।
2: अच्छा,
1: और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, पूरी टीम को सलाम दे दिए।
2: वालेकुम सलाम,
1: और गेस्ट को भी वेलकम खालिद मैनी, ग्रेट पर्सनैलिटी, ये आपको जानते हैं पर्सनली, मैं आपको बता रहा हूँ।
2: अच्छा,
1: ये आपसे मुलाकात कर चुके हैं। और वैसे भी कह रहे हैं कि FM आए थे पहले भी जब आपके साथ FM आता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये अभी भी आए थे बीच में जब ये शो हम कॉन्सर्ट।
2: अच्छा, वैसे ये काफी दफा हुआ है कि जब भी मैं तुम्हारे पास आया हूँ
1: कोई ना कोई साथ होता।
2: आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि मैं आपके पास अकेले।
1: चलो यार ये अच्छा हो गया, इसका भी अपना एक्सपीरियंस है, बड़ा जबरदस्त ठीक हो गया, ठीक हो गया। वैसे वो भी बड़े मजा आया कॉन्सर्ट, आपको बड़ा मुबारक हो भाई, खालिद मैनी ने इतना जबरदस्त वो कॉन्सर्ट अरेंज कराया एंड में थोड़ा जरा।
2: हाँ, वो असल में
1: बहुत लोग थे यार,
2: बहुत आ जाती है। और अभी 18 को फिर हो रहा है मेरा कॉन्सर्ट।
1: हाँ जनाब, जो आपदा
2: आपदा
1: फैन है उनको बता दें भाई, मोइन खान अकेडमी में,
2: मोइन खान अकेडमी में।
1: अच्छा, हम लोग तो बोल देते हैं फिर लोग वहाँ रश लगा होता है, फिर अजीब कहानी हो जाती है।
2: लेकिन बात ये कि यार होता क्या है कि टिकट ये फंड के लिए कर रहे हैं ना।
1: अच्छा ठीक है,
2: तो अब वो मुफ्ता कितना दिया जाए।
1: सही बात है, एक हद तक होता है।
2: आज तुमने देखा था कोई 150 बंदा खड़ा हुआ था मेरा नाम लेके,
1: और ये खालिद मैनी इतने मशहूर, वहां लोग बोले यार हम उसके तरफ से आए हैं, उनको बनाए जरा हम जरा। और खालिद भाई ने कमला अंदर कराया,
2: आते वक्त उन्होंने बोला भाई मैं कौन हूँ और खालिद मैंने कौन।
1: अच्छा जनाब, वैसे आपने मुझे डरा भी दिया था, जो गर्मी में आप भी होश हुए हैं। वाह वाह वाह,
2: ऐसी बात है यार,
1: वैसे बाकी बहुत ही बहुत रश था यार,
2: हिम्मत वाला काम।
1: अच्छा जी मिसेस फारूक कैसी हैं आप, ठीक हैं खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, और दुआएं इतनी सारी दी हैं, सदा खुश रहें सलामत हैं, बहुत शुक्रिया मिसेस फारूक। और भाई हब्दिल अजीज संजीदा जी हमें सुन रही है, संजीदा क्या हाल है, वालेकुम अस्सलाम, और इतने प्यार से हमेशा की तरह अगेन आपने वेलकम कहा। मेहमान को मकबूल शो में वेलकम करती हूँ। वाह,
2: ये तो बर्मेंड आपकी फैन है ना,
1: ये फैन क्या यार, इनकी बस प्यार मोहब्बत है और कुछ भी नहीं।
2: माशाल्लाह,
1: और इसलिए कह रही मिस भी कर रही हूँ भाभी की, हम देखो भाभी पे भी तवज्जो देनी है, ऐसा ना हो कि हमारी बातें सुन रही हो भाभी की हट रही हो, देखो कान में हेडफोन लगा के जो है ना वो अभी यहाँ पे भी आई है तो FM सुनने जा रही है, ये भी है। अच्छा जनाब पठानी ले जाओ, बस वो मेरे मुझे याद आ गया अपना वो बख्शू भाई, माशाल्लाह जबरदस्त
2: भाई।
1: अच्छा जनाब, पुराने गानों की और इंग्लिश गानों की जरा बातचीत हो रही थी, तो पर्सनली कौन से बड़े फेवरेट बैंड रहे जिनको सुनते रहे हो? तो
2: यार मैं यूट्यूब ऑल टाइम फेवरेट,
1: यूट्यूब वो भी था, बीजीज का भी जिक्र किया,
2: बीजीज
1: बीजीज। अच्छा, पुराने वक्तों में हमारे दौर में बीजीज बड़ा हिट था, हालांकि गाता नाक से तो कौन सी अजीब सी जमान थी,
2: वो तीन लोग गाते थे,
1: तीन भाई
2: वो वहाँ के उस टाइम का फर्स्ट मेरा ख्याल है ये जो बैक स्ट्रीट बॉयज टाइप का जो
1: माहौल था।
2: लेकिन वो बैक स्ट्रीट से कोई म्यूजिक नहीं,
1: 70s में भी बहुत सारे बैंड्स थे।
2: हाँ लेकिन ये तीनों बंदे एक साथ गाते थे और क्या म्यूजिक होता था इनका।
1: बात तो फिर मैं बात कर रहे हैं तो क्या ख्याल है दोस्तों, जरा इन्हीं को शामिल करते हैं। और बीजीज का लोन गाना तो कमाल गाना था यार।

0: AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।
3: This program is brought to you by
4: Haier का नया No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving. No Frost, No Worries.
3: Like us on Facebook.com/FM247365. FM247365.
5: Active,
6: yummy,
5: adorable, zabardast.
7: Say I've got a crush on you.
8: Ye pyaar to suno yaar.

0: वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ जो मैसेज करेंगे अच्छा स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड करेंगे 3636 और संजीदा जी कह रही है बहुत शानदार शो है भाई वाकई में यार क्योंकि खालिद भाई आए हुए हैं ना तो जरा म्यूजिक के हवाले से मैं उनसे गपशप करता रहता हूँ काश के कॉल्स का सिलसिला होता खालिद तो जरा मजा आता कॉलर्स को बड़ा मैं मिस कर रहा हूँ आजकल लेकिन देखते हैं आने वाले वक्तों में कह रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे कुछ फनी खराबी भी है फनी खराबी वो नहीं दूसरी खराबी उन्होंने कहा कि नहीं अभी फिलहाल जो है लोगों को खास तौर पे पेट्रोल से जिस तरीके से आवाम जो है ना मायूस हुई यार इस पे भी थोड़ी गानों पे तो होती रहेगी बात ये जो किया ये क्या किया यार इन्होंने
1: यार ये कुछ नहीं यार बस मतलब हमें ना आसरा दिया है हम लोग आसरे में
0: मुझे लगता है देखो गरीब आवाम का सोचना चाहिए जो भी गवर्नमेंट आती है उसको लेकिन ये कि फिर मैं उनको ये कहता हूँ यार जो गवर्नमेंट आवाम के वोटों से आती है तो वो होती सोचती है कि नहीं अब आप जब इस तरह आएंगे तो आवाम के बारे में कैसे सोच पाएंगे ये भी एक मसले मसाइल है
1: भाई हाँ ये तो मायूसी वाली बातें बस करो ही ना
0: लेकिन ये कि दोस्तों आप लोग मायूस नहीं हो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लेकिन यार एक बात और भी है एहतजाज भी करना चाहिए बोलना भी चाहिए जब तक बोलेंगे नहीं तो कैसे काम होगा ये वाली बात भी है इस पर बाद में बात करेंगे अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई कैसे हैं आप और सबील जेवर आ गई हैं सबल भी बोलती है नाम जरा मैं वो कंफ्यूज हो जाता हूँ लेकिन बहरहाल समझ गई है कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक आपको और आपकी फैमिली को बहुत सारा सलाम दुआएं एफएम 100 को सलाम टीम को सलाम भाई वालेकुम सलाम और अयाज भाई लव योर एनर्जेटिक वॉइस अल्लाह ब्लेस यू थैंक यू वेरी मच बिलावल भाई को और मिसेस फारूक रानी सिस्को और इमरान भाई को बहुत सारा सलाम वालेकुम अस्सलाम बिलावल भाई की तरफ से भी सलाम आया हुआ है आपको और सुबल की तरफ से भी सलाम आया हुआ है आपकी तरफ से माशाल्लाह क्या बात है आपके अब म्यूजिक से हवाले से फिर बात अच्छा ये भी म्यूजिक का भी जो होता है ना इनबिल्टी होता है कोई जबरदस्ती बंदे को नहीं कह सकता हाँ। क्या आप जी है ना
1: यार मतलब आपका शौक होता है बाज लोग नहीं सुनते म्यूजिक हम लोगों तो शुरू से आदत है
0: शुरू से ही और बैंड वगैरह हमारे अच्छा एक वक्त था जो 90s के 80s के जो बच्चे हैं जो उस वक्त कॉलेज में पढ़ रहे थे उनको ज्यादा ये इंटरेस्ट होता था क्योंकि नए यहाँ पे वो चीज
1: यार डेवलप हो रही थी हम लोग ना मैगजीन से म्यूजिक ढूंढते थे कि यार कौन सा बिलबोर्ड में टॉप 10 चार्ट में किसका गाना चल रहा है हमें सुना नहीं होता था फिर वो हम जाते थे तारिक रोड पे फिर वो हमें कैसेट देते थे मैगजीन दिखा के कि ये नंबर वन पे चल रहा है
0: शॉप्स होती थी ना
1: डॉक्टर रिफत लिप्स रैकेट
0: जिनका क्या बात है उनका वर्जन होता था जबरदस्त तारिक रोड
1: क्योंकि हमारा नियरेस्ट तारिक रोड ही पड़ता था क्लिफ्टन कम जाते थे
0: हमारा वो ऑफबीट
1: तुम लोग का ऑफबीट था वो
0: था बड़ा जबरदस्त यार वो
1: अच्छा ऑफबीट की ब्रांडिंग बड़ी जबरदस्त होती है वो टीडीके की कैसेट होती
0: और येलो कलर का उनका पेपर के ऊपर
1: अच्छा हम लोगों ने वो दौर देखा है कि मतलब हम लोग इतने भी पुराने नहीं थे कि एलपीज वाला नहीं था लेकिन एलपीज को देखा था सुना नहीं था
0: उस वक्त एलपीज हिट थे
1: लेकिन हमने फिर वो याद है तुझे वो एक बड़ी वाली सीडी आई थी
0: बुढ़ी अरे हाँ यार वो बड़ी सीडी यार वो कम चली
1: हाँ,
0: कम
1: चली उसके बाद ये सीडी आ गई कॉम्पैक्ट डिस्क आ गई फिर हम लोग वो कैसेट का दौर खत्म होता जा रहा था
0: हाँ,
1: फिर हमें सारा जो बाहर का मंजन था वहां से मिलता था रेनबो सेंटर से
0: सही बात है सिंगापुर रेनबो पे बात करता हूँ मुश्क लला आ गई है मुश्क कैसी है आप सलाम अलैकुम किंग अयास क्या हाल है मीठी सी आवाज सुनकर अच्छा लग रहा है सो स्वीट आप इस तरह बोलते हैं ना तो जरा अच्छा लग रहा होता है अच्छा गेस्ट को वेलकम और सलाम सर आपको
1: वालेकुम सलाम
0: मुश्क की तरफ से वैसे अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं फोन को यार फोन मेरा मुझे ऐसा मुझे लग रहा होता है कि फोन ठीक हो सकता है लेकिन उन्होंने जानबूझ के कुछ कम किया हुआ है लेकिन देखते हैं क्या होता है जब भी होगा तो इंशाल्लाह फिर लेकिन मैं नो डाउट मैं मिस कर रहा हूं आप सब लोगों को अच्छा सॉन्ग्स की मकबूलियत कैसे मालूम होती है ये सॉन्ग हिट होगा ये बस सवाल है उनकी तरफ से कैसे पता
1: अच्छा देखें मुझे एक टेक्निकल बात बताई थी शफकत अमानत अली शफकत भाई ने
0: ठीक
1: वो तो खैर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जो उन्होंने मुझे कहा था कि जैसे हमारा गाना हिट हुआ था आंखों के सागर फ्यूजन बैंड का उस वक्त मैं फ्यूजन बैंड को मैनेज करता था शायद आपको याद होगा
0: बिल्कुल ऐसा ही है और उसके बाद फिर एजाज भाई
1: तो मेरे बाद में आए थे लॉन्च वाले लोग हम थे
0: मैं समझ गया हूँ आपको तरफ चला गया
1: तो उन्होंने जब ये आंखों के सागर हिट हुआ तो मुझे उन्होंने मैंने वैसे ही पूछा कि यार शफकत भाई ये गाना मतलब इतना लोग क्यों पसंद कर रहे हैं तो उन्होंने बोला यार ये राग यमन में और राग यमन जो है वो तुमने बचपन में और भी गाने सुने होंगे तो वो आपके टेस्ट बड डेवलप हो जाते हैं गान के
0: तो राग यमन में फिर सारे लोग
1: सुनते रहे
0: अच्छा
1: तो हमारे जो राग है ना जो हमारे गानों में जो राग हमें बार बार सुनाए सिर्फ एक राग के ऊपर तो गाना नहीं बना ना
0: सही बात
1: और भी गाने جو اور ڈفرینٹ راگز ہیں ان میں بھی گانے بنتے, تو وہ ہمارے کان ٹیون ہوتے ہیں, تو وہ کوئی نئے اس میں انداز میں کوئی نیا گانا اگر وہ کسی راگ سے ریلیٹڈ ہے یا وہ اس میں بنا ہوا ہے تو وہ ہمیں آٹومیٹکلی پسند آئے گا, لیکن سنانا پڑتا ہے.
0: صحیح.
1: اب یہ ہے کہ سب انڈیویجل, سب کا موبائل ہے, سب اپنی اپنی سن رہے ہیں, تو بس
0: صحیح بات ہے. اچھا ایک بات بتاؤں, جو چیز آپ پہلے آسانی سے نہیں ملتی تھی نا اس کی قدر بھی تھی, آپ بڑی مشکلوں سے ایک ایک گانے کو ڈھونڈ کے جب لاتے تھے نا اور جب آپ سنتے تو ایک اچیومنٹ محسوس ہو رہی تھی, واہ یار کیا میں نے بلاخر گانا ڈھونڈ لیا. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ویلیو بھی کھو گیا وہ اس طرح کا مول.
1: یار اب چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں. اب تو میرا بیٹا ہے وہ میوزک, میں کیونکہ ظاہر سی ہوئے تھے میری ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, پروڈکشن کمپنی ہے, تو میٹ میڈیا آج کل آپ دیکھتے ہوں گے سارے کانسرٹس وغیرہ میں.
0: صحیح.
1: میں اس کو بولتا ہوں تو وہ اپنے انداز میں بولتا ہے کہ بھائی یہ آپ جو میوزک کرتے ہیں نا یہ مجھے سمجھ نہیں آتا.
0: صحیح.
1: میں جو میوزک جو سنگر کو میں چوز کر رہا ہوں آپ اس کے اوپر کام کریں.
0: ٹھیک ہو گیا جناب. اچھا جناب میسج بالکل میں شامل کروں گا. بھائی ہمارا چینل بھی بن گیا ہے یوٹیوب پر آر جے ایاز کے نام سے, آپ نے جانا ہے اس کو سبسکرائب کرنا ہے. یہ میں اب آپ لوگوں کو رٹواتا رہوں گا اور کہتا رہوں گا آر جے ایاز, تاکہ وہاں جائیں سبسکرائب کریں, اور وہاں ہم کچھ پلان کر رہے ہیں کہ ہم وہاں ریگولر رہیں, آنا جانا وہاں بھی شروع ہو. اچھا جی امی رباب کہہ رہی ہیں میں نے ایاز نام لکھنا بھول گئی. نہیں کوئی نہیں, ہم نے اندازہ لگا لیا آپ ہی ہوں گی. اور آپ کے مہمان کو سلامت, بالکل بہت بہت شکریہ. اور نسرین پٹیل کا میسج پڑھتے ہو, میں آپ کا بھی میسج پڑھتا ہوں.
1: ویسے یار کوئی گانا لگاتے ہیں تو زیادہ بہتر نہیں.
0: میں ابھی لگاتا ہوں, بے فکر ہو جاؤ,
1: بس بیٹھے ہیں اور کوئی گانا ہی نہیں.
0: میں ابھی لگاتا ہوں. وعلیکم السلام کا میسج آ گیا سنبل کو مسز فاروق کی طرف سے. ہاں جی آپ کون سا گانا لگاؤں؟
1: کوئی میوزک مطلب
0: یار میں آپ کو ایک اور گانا یادوں میں لے جاتا ہوں, ڈونٹ بریک مائی ہارٹ. اور یہ گانا مجھے اس کو ہندی والوں نے بھی کچھ کاپی کرنے کی کوشش کی,
1: مطلب یہ گانا تو کمال,
0: لیکن یہ اپنی کلاس ہے, چیک کریں. یو بی 40 ہے بینڈ, کمال بینڈ تھا یہ.

0: क्या बात है जनाब, जबरदस्त ये ट्रैक। अच्छा इनका एक ट्रैक था मस्ट हैव बीन लव, अगर आपने प्रीटी वुमन मूवी देखी हो, क्या कमाल सॉन्ग था। अभी तक घुमे खालिद मैनी भाई, वापस आ जाओ।
1: आ गया।
0: ठीक है। अच्छा जनाब, कादरी पक्ष बलोच कह रहे हैं आपके गेस्ट को सलाम, और इसके अलावा महा यूसुफ भाई कह रही है एंजॉय करते हैं आपके क्यूट क्यूट बातों को, और बैकग्राउंड आपकी तरह गुड है, और क्या कहने जानी, वैसे दिल करता है आपके लिए बहुत कुछ लिखूं, पर क्या मिस यू। हाय क्या बात है जनाब, बड़ी मेहरबानी, और कादिर पक्ष आपका बहुत शुक्रिया। संजू को भी सलाम कह दिया, बिलावल को भी सलाम कह दिया। अच्छा जी, और भाई बातचीत हमारी हो रही है, और बिल्कुल जनाब कॉल रिसीव कर लें आप। अच्छा जनाब, सॉन्ग्स मैं आपको सुना रहा हूँ, गयासुद्दीन बलबन, बहुत शुक्रिया क्यू शीट पसंद करने का। एक और जबरदस्त सा ट्रैक सुनाते हैं, और उसके बाद जनाब टाइम चेक भी है, और 10 बजे के बाद 1 मिनट की ब्रेक भी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, लेकिन जाने से पहले बिली जॉल का ये जबरदस्त सा ट्रैक एंजॉय करें, और मैसेजेस करें 3636 पर।

0: FM 100's time check. It's 10 p.m. This program was brought to you by
1: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Aur Energy Saving No Frost, No Worries
2: Jazz Cash Ke Saath Pao 1 Crore Jeetne Ka Shandar Mauka April Aur May Miss Ho Gaya? To Tension Kaisi? Mauka Abhi Bhi Baki Hai अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना
3: शराय तो जवाबित लागू है
4: FM 24/7 365 FM

0: Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं फिल्म 100 अयाज अहमद के साथ और साथ ही साथ मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर। अच्छा जी फरहीन शहजादी कह रही है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, मेहमान को मेरा दिल से सलाम। वालेकुम सलाम, मेहमान चले गए और क्या कहने, जबरदस्त शो चलें जी, बड़ी मेहरबानी है। और कह रही तुसी तो सानू भूल गए। बिल्कुल मैं नहीं भूला भाई, बिल्कुल नहीं भूला। जरा यहाँ पे रश हुआ हुआ था लोगों का, जरा आना जाना ज्यादा हुआ था। अब लोग चले गए सब, तो सुकून और इत्मीनान से अब आपके मैसेज होंगे और ये आपका खादिम। सलाम, कैसे हैं आपको, शो देर से सुना, सबको सलाम जरीनूर। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, सुनना शुरू कर दिया यही बड़ी बात है। नौरीन तौसीफ कैसी हैं आप, फैसलाबाद से हमें सुनती हैं, सलाम दुआ सबको और तमाम प्यारे प्यारे निसंस के भी सलाम, ढेरों सलाम जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। लायला आ गई हैं, प्रिंस अयाज आपको सलाम, बिलावल और तमाम निसंस को अस्सलाम वालेकुम, जीते रहिए मुस्कुराते रहिए। हाय इतनी दुआएं भेज दी आपने। नायला जी आप बताएं कैसी हैं, तबीयत सेट है, मजे में है, गर्मी इंजॉय हो रही है कि नहीं हो रही। वैसे मुझे लगता है कि हमारी दुआएं जो है ना यूरोप तक पहुंच गई हैं कि यूरोप में भी शदीद तरीन गर्मी, और लोग ये कहने पे मजबूर हो गए हैं, बल्कि कह रहे हैं कि इससे ज्यादा गर्मी कभी आई नहीं। और मैं पढ़ रहा था कि 2000 के करीब लोग भी दुनिया से चले गए, हलाकते हो गई हैं भैया, इतने लोग जो है उनकी डेथ हो गई, अंदाजा लगाएं कि कितनी गर्मी होगी यार। वैसे ये है कि इस गर्मी ने हमें पूरे काफी सारे सालों से प्रैक्टिस दिला दी है। और वो बता रहे 31 डिग्री पे उनका ये हाल है कि आप इसे, मेरे ख्याल से फील ज्यादा हो रही होगी शायद, ये वाली भी बात भी है। 31 तो हमारी नॉर्मल बात है भैया। चले जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जानेब, और गयासुद्दीन बलबन बहुत शुक्रिया, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है भाई इनको।

right, जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं 100 और साथ साथ जनाब मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं। रमजान पठान साहब मैसेज कर रहे हैं, रमजान भाई कैसे तबीयत है, ठीक हो, मजे में हो। अयाज भाई आपको सलाम। और अयूब आफरीदी की डेडिकेशन ना किया करें क्योंकि वो जिन फीमेल्स को सॉन्ग डेडिकेट करते हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा रमजान भाई तो दिलादारी हो रही, चले मैं तो कह रहा हूँ जरा रिश्तेदारों को समझाओ। बाकी रमजान में जो आपका हुकुम डेडिकेशन आएगी तो मैं कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा, किसी ना किसी की तो रिश्तेदार होती हैं। अच्छा जनाब गयासुद्दीन बलबन ने जो है ना जरा फील लाइक वाली जो है ना डिटेल हमें सही से समझाइए। ये मैं पहले भी सुन चुका हूँ, बड़ी अच्छी बात है। कहने के बताया जाता है कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, साथ लिखा होता है फील लाइक 49 डिग्री। इसका क्या मतलब है? बड़े वहां सही बात की आपने, लोग बड़े परेशान है कि टेम्परेचर तो 41 है, फील 49 क्यों भाई? तो उन्होंने इस मिसाल से समझाया कि आपके वालिद जो है किसी बात पर बेइज्जती कर रहे हो और ऊपर से कोई रिश्तेदार आ जाए तो होने वाली बेइज्जती का तनासब तो वही रहेगा मगर इसको महसूस करने की शिद्दत बढ़ जाएगी। भाई बहुत ही आला जबरदस्त, पापा डोंट प्लीज गाना याद आ गया।

जनाब, वेलकम बैक। सुन रहे हैं मैसेजेस पहुंच रहे हैं। नायला नहीं, गर्मी ने तो माइंड को चकरा दिया। बिल्कुल सही कहा आपने, चकरा के दिया बंदा, टूनों के गिरावा भाई। बिलावल कह रहे हैं सर गुड प्लेलिस्ट, थैंक यू वेरी मच बिलावल भाई, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, और इसके अलावा मैसेजेस हमें कर रही हैं नौरीन तौसीफ भी, और कह रही है ये ममालिक ज्यादा हाइट पर हैं अयाज भाई, इनसे ये गर्मी बर्दाश्त। हाँ वैसे बात सही की आपने, और वहाँ फील भी जरा ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा महसूस हो रहा होता है। और इसके अलावा हाँ जी, यूरोप वालों का तो ये हाल है गर्मी से, और कराची वालों का क्या हाल है इस वक्त हो रहा है आपको पता है? मुझे बिल्कुल पता है, अच्छी तरह पता है। जो बेचारे बगैर एसी के उनसे पूछे आप, खैर उनकी बॉडी भी यूज्ड टू हो जाती है। वैसे मैं आपको आपस की बात बताऊं, एसी कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इतनी गर्मी में तो बंदे को एसी चाहिए होता है। लेकिन कोई बात नहीं, इस टाइम ये है कराची की अच्छी बात यह है कि रात को मौसम काफी अच्छा हो जाता है। समर ऑफ 69 याद आ गया गर्मियों में, क्या कहने ब्रायन एडम्स के।

0: जी सुन रहे हैं FM 100 और मैसेजेस करें कि HR स्पेस टेक्स्ट करते हैं और सेंड कर देते हैं 3636 पर. बहुत शुक्रिया मिसेस वारू गाने पसंद करने का. ट्रैक्स आपको पसंद आ रहे हैं. अब क्योंकि वो जरा हमारे गेस्ट गए हैं तो मैं जरा सुकून से प्लेलिस्ट पे जरा फोकस कर दिया भाई ने. रुबाब कहनी अयाज मैं भी तो सुनती हूँ मालूम आपको. मुझे मालूम है आप बिल्कुल सुनती हैं, बिल्कुल सुनती हैं. अच्छा जी ना सुनो तो मजा नहीं आता मालूम. संजू को सलाम. अयाज आप बहुत अच्छे हैं बट तारीफें कर दी ने मैं आगे नहीं पढ़ रहा मुझे शर्म आ रही. रुबाब जी आप खुद बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छी हैं. अल्लाह आपको खुश रखे, हमारी दुआएं आपके साथ होती हैं. इसके अलावा रमजान पठान कह रहे हैं ये बिलावल कौन है, क्या करता है भाई. ये शादी का दफ्तर है थोड़ी जी, शादी के दफ्तर में पता करते हैं भाई, बायोडाटा लेते हैं तुम क्या करते हो क्या नहीं करते. रमजान भी कुछ ना कुछ करते होंगे, कुछ रहने दें उनको. और आपने पता करके क्या उनका शनाख्ती कार्ड बनाना है भाई. रमजान क्या करते हो, आप क्या करते हो भैया, डायरेक्ट पूछ लिया क्या करता है. कोई राशन कार्ड बनवा रहा हो, कोई फायदा हो दिलवा रहा हो तो चलो भाई समझ भी आता है. अच्छा जनाब 10:30 हो गया टाइम और कुछ सेकंड की ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद.
1: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
2: शराय तो जवाबित लागू है.
3: facebook.com/fm247365
4: Active, yummy, adorable, zabardast. Say I've got a crush on you. Ye pyaar to suno yaar.

जी वेलकम बैक, सुन रहे FM 100 और टाइम जो है गुजरता चला जा रहा है, 10:35 हो गया टाइम। अच्छा जी, रुबाब कह रही है, नहीं रुबाब नसरीन पटेल अयास को नजर न लगा देना माशाल्लाह के। अच्छा रुबाब जी कह रही माशाल्लाह कह दिया करें जी, उन्होंने वैसे वो कहती है यार, वो जिस तरीके से कहती है नजर नहीं लगी। सलीम मेमन के मैसेज आ गए, सलाम अयाज भाई, मैं इस वक्त छत पर हवाखोरी, अच्छा जी हवाखोरी करूं और शो भी सुनो, क्या कहने सलाम है आप सलीम मेमन भाई, सलाम है आप। अच्छा जी आप आ जाते हैं एफएम पर तो हमारा संडे स्पेशल हो जाता है। जरी नूर क्या कहते, और मैं सच बताऊं यहां आके मुझे भी मजा आता है, ऐसी बात नहीं, फुल टाइम मैं भी इंजॉय कर रहा था। और महा यूसुफ जई आपके मैसेज बिल्कुल पहुंच रहे हैं, अपने प्यार से मैसेज लिखने का बहुत शुक्रिया, ऑन एयर नहीं पढ़ सकता, ज्यादा ही प्यार लिख दिया आप, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और जनाब उन्होंने दो दफा माशाल्लाह लिख दिया है मिसेस फारूक ने। चले जनाब, और सॉन्ग्स पसंद करने का शुक्रिया, कह रही बैक टू बैक अच्छे गाने लगा रहे हैं, चले जी बड़ी मेहरबानी। और इसके अलावा कुछ दोस्त अभी तक कुछ पेट्रोल के हवाले से लिखे जा रहे हैं, पर कल के शो में जरा आराम से इस पर डिस्कस करेंगे। जी नेक्स्ट ट्रैक की जाने, अरे क्या बात है, ब्रोकन एंजल इंजॉय करें, क्या चाहे स्पेस टेक्स करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर।

0: take a short commercial break.
1: चेस कैश के साथ पाओ एक करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
2: शराय तो जवाबित लागू है.
3: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फूट उसका नौजवान तबका है. पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरद आबादियाती सरमाया है. नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं. अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहरेज. मुनशियात हरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां बात है. हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं. यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन एल वाजे मकसद और मसले

जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ जनाब मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर भी। अच्छा जी, शो अच्छा है, खुश रहें, दुआएं मेरी आपके साथ। अच्छा जी जरीन, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अयाज भाई, आपको खाने में रबड़ी पसंद है तो किसी दिन लेकर आ जाऊं। सलीम अहमद भाई, मैं मीठा जरा कम खाता हूं, लेकिन आपने कह दिया, समझे मैंने खा लिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जनाब, और इसके अलावा बिलावल कह रहे हैं सर आयरलैंड ने सेकंड T20 में, हाँ यार मैंने सुना भी, बल्कि अभी मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया मुझे कि भाई आयरलैंड जो है वो 2 मैचेस लगातार जीत गया भाई, और सीरीज भी जीत गए वो। तो यार हम पाकिस्तान को ऐसे ही बोल रहे हैं, ये मेरे ख्याल से IPL में ना आप देखिए 200 चेज हो जाता है, 250 चेज हो जाता है, और जब जरा सी कोई इस तरह की विकेट आती है ना इंडियन से नहीं खेला जाता, बस घर में इन्होंने विकेट बनाई हुई, वो सेंचुरियां बना रहे हैं और एक दूसरे को मार के खुश हो रहे हैं। तो जहां जरा अच्छे बॉलर, जरा विकेट, जरा चेंज, जरा बॉल में मूवमेंट, वहां जरा पाकिस्तानी टीम का भी यही हाल है और इंडियन टीम का भी यही हाल है। इसी बात पर रिचर्ड मार्क्स याद आ गए और इनका यह खूबसूरत सा ट्रैक।

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Like us on facebook.com/fm247365
5: FM 247365

बातों से जो कभी हो ना पाई, उन बातों से जो कभी कट ना पाई, साथ उन रातों से तोड़ के जो की गई, उन बातों से बेवफा तुझे कैसा माना, तुझे मैं कहूँ बताना, मैं अमृत दिया ले तुझे ये तराना, तब उतर जा अब लौट के ना।

imbrigazione! Imbrigazione!